पहले मनुष्य का मन थक जाता है। शरीर के रोगी होने से पहले मनुष्य का मन रोगी हो जाता है। इसलिए हमें मानसिक क्रांति पर विजय पाने का उद्योग करना चाहिए। जब तक चरित्र में अवगुण रहेंगे, आदर्श स्वास्थ्य की आशा व्यर्थ है। कुविचार मानसिक विकार है, और चूंकि शरीर मन का अनुयायी है, मानसिक विकार शरीर को

नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण FM 103.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज के पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर रुबा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सन 2026 के अगस्त महीने के आज 5 तारीख है और दिन है बुधवार। आज के हमारे ये पहले प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी थंगजंग तथा तकनीकी अभियंता PB ड्योरी। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें।

0: अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। छह बजकर 45 मिनट पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुबह
1: सवेरे। 7:10 पर आप सुनेंगे आपातकालीन श्रोताओं का समाचार।

और इन सब के अलावा आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित आप सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज 8:30 पर। 8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर।

0: suoni degli tender soppressare hindi e non angreci mi fa male.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि

भी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल अवस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास, सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं के समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश के संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता

0: Passes for women aged 60 years and above. In the first supplementary budget for the financial year 2026-27, a provision of rupees 100 crore has been made to reimburse the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation for implementing this initiative. The Bharatiya Janata Party had promised this measure in its Lok Kalyan Sankalp Patra. This decision will provide financial relief to millions of senior women across the state, enabling them to travel for religious, social, family and health care related needs. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम भक्ति गीत के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
2: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ,
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग, लेकर हाजिर हूं श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक शांति से भरपूर आपका अपना कार्यक्रम भक्ति गीत। श्रोताओं, महादेव एक ऐसा नाम जिसका स्मरण करते ही मन शांत हो जाता है और आत्मा भक्ति के रंग में रंग जाती है। भगवान शिव शंकर आदि भी है और अनंत भी। वे संहार के देवता हैं, लेकिन उसी संहार से नए सृजन का मार्ग भी प्रस्तुत।

और संयम से सहकर समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ा जाए। श्रोताओं, आज के इस पावन भक्ति सफर में हम सुनेंगे शिव भक्ति से ओतप्रोत शिव भजन और आरती, भक्ति संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल की मधुर और आत्मा को स्पर्श करने वाली आवाज में। तो आइए मन की सारी चिंताओं को महादेव के चरणों में अर्पित करें, आके बंद करें, श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का स्मरण करें और जुड़ जाइए भक्ति के इस दिव्य संगीत सफर पर सिर्फ अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, महादेव की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे बाहरी अदंबर नहीं बल्कि सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करती हैं। एक बेलपत्र, एक लोटा जल और श्रद्धा से किया गया स्मरण भी भोलेनाथ तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है, जो अपने भक्तों की पुकार पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव हमें यह संदेश देते हैं कि मन जितना शांत होगा, जीवन उतना ही संतुलित होगा। उनका ध्यान मग्न मुद्रा हमें सिखाती है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में भी कुछ पल आत्मचिंतन और शांति के लिए निकालना कितना आवश्यक है।

श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भक्ति गीत। श्रोताओ, महादेव के गले में विराजमान नाग हमें निर्भयता का संदेश देता है। त्रिशूल हमें मन, वचन और कर्म में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है और उनके हाथ में धमरू प्रस्ति के आदि स्वर नाद और चेतना का प्रतीक माना जाता है। जब संसार की हलचल मन को विचलित कर दे, तब केवल एक मंत्र ओम नमः शिवाय मन को स्थिर कर देता है। यह केवल मंत्र नहीं बल्कि आत्म शांति और आध्यात्मिक जागरूकता

0: दोस्तों, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर जो पोलोगे लोंग नाने यूरने आरोलोग गालो मेंके नगम मेंजी दोंसी लुपर गदु एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट सेंस मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लोहित डिस्ट्रिक्ट ग्लोले डिजिग्नेशनम इंडिया जोके चामरगोला आकेन नाने रामसर साइट गवे मेंकोक जिका जकने डेवलपमेंटम मिनिस्टर में सोशल मीडिया पोस्ट लो जिगिन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाटर एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी और सस्टेनेबल लिवलीहुड लोग इम्पोर्टेंट न स्टेप गवे मेनकेन जीतू और जकन प्रेस वाटर लेक जिगी ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी का हॉट पॉट बरिला कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरालो दो दू एजितू चीफ मिनिस्टर पेमा कांदू स्टेट लो रामसर साइट दो तुबे दो नाम ने मैकेन दूला जब रिकॉग्नाइज रिजिनम लगा वे पीएम मोदी नेला फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह मुन्यम कुमनाम जोनम आगमेम जिलिक्तू आईसीआर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर एन तरु आलो सैटरडे लो 8 AM टू 9 PM लोबे देरानातुम गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर लो सिविल मॉक ड्राइल गो सिटी वाइड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रिगताला कंडक्ट गते दू मॉक ड्राइलम आरुम 8 PM लो एयर रेड सेरेनम बाजिला 8 to 8:15 PM लोबे 15 मिनट्स गो कैपिटल आरा लो एक दूला दौरे ओगो कैपिटल लोक रेने दूने नारू ए लाइटम ओपला नाम आरानो दूला बोजोला लोमला जिला रेतम आवे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एमला इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एम कॉपरेट रादबेरोगुतू मॉक ड्राइल एक्सरसाइज रिदागला लो ट्रैफिक एम चीन मतुमरे ओक इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एचिन रेरे पब्लिक एम आलोलो पुलिस गे इंस्ट्रक्शन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ओके कबे ऑफिसर्स डिप्लॉयड नामलोक आगमेम पोरो पोलो जीरु लाका एलारोगुतातु इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ईस्ट कमिंग काबलने लोअर सुबनसिरी पापुम पारे लोहित नामसाई ओके लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ने ऑरेंज एलर्ट जिला डिस्ट्रिक्ट गादी जगो दोगुम दौरा इंताला निदो तीर्थ कम्बरे जितु ओके इरुगोला आउम डिस्ट्रिक्ट गोनम येलो एलर्ट जितु रेने दुने गादम एनजी का जिला ओके इंदिन के दिनजा मालो जर्नी इमो माधव मेन्तम तु मेन के नागम सिमनुन आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन लोक तपादु डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश माइ भारत एमला मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम लकेंदुला स्टेट ग यूथ एम यूनिक ने डिजिटल स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव स्टेट ग रिच हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशंस टूरिज्म ऑफ इंस्पायर ने दो यू एम कातम मिंजी देको जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज अरुणाचल प्रदेश लो पार्टिसिपेट दब इन्वाइट टू डिपार्टमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूथ ऑर्गेनाइजेशंस NSS वॉलंटियर्स माई भारत मेंबर्स NGOs ओके स्टार्टअप टूरिज्म स्टेक होल्डर्स ओके लोकल कम्युनिटीज एम चिन कादुक बे पार्टिसिपेट दोला स्टेट ग यूथ से मोटिवेट मोला एम्बेसडर बे रुमतो का एला एनकरेज जितातु मरो दोर्जी कांदु गवर्नमेंट कॉलेज तावांग लोक स्टूडेंट मुनुगे पोलो अप समर वेकेशन लो आदगादक डिपार्टमेंट गरिकोलो इंटर्नशिप एम अल जाबर पितोरेला इनोवेशन चैलेंज प्रपोजल को कातम तु प्रेजेंटेशन एम डीसी नांगमेल आंगमोगे गाइडेंस लोक रिगला ओगो स्टूडेंट मुनुगे फील लोक एक्सपीरियंस रिनाम एम प्रैक्टिकल बरिला कातम तु दुकुम नम एड्रेस दुला डीसी आंगमो स्टूडेंट एम मुनुगे माजी बमलांग मलाकला रुरु लापे एला चेनलन चेनलेन पालेन नामने कोइकला जाप्तु अरुणाचल प्रदेश लोक साजी नातुंग हिमाचल प्रदेश ग माउंट यूनान 6,111 meters inland India joka ritu rila India Book of Record 2026 lo mega achievement paname Deputy Chief Minister Chonamen social media force lo mega tornam ganam adventure rinam loke state ok ne des gayutem majbe insfer jidu ela koik tu kajirga galomen kenagome ege

0: naruam agamba ngoner me Mario Mata hi akasbani itanagar ok arun fm 103.1 megahertz tanagadde akasbani ga galodumba higi hilo sarkengo ori me pilikdu sarnom ne ekaja amdagla sarkengo ori ne hilo tomdum namga lege lega ja eku
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार और आगे के कार्यक्रमों को आप हमारे मीडियम वेब के चैनल में सुन सकते हैं। इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुप्रभात दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह एक प्यारी सी मुस्कान, नई ऊर्जा और अच्छे विचारों के साथ शुरू हुई होगी। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगे और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा मॉर्निंग हेल्थ शो सुबह सवेरे, जहां हर सुबह हम बात करते हैं योग की, व्यायाम की और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातों की और एक बेहतर एवं स्वस्थ जीवन शैली की। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने काम, जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं में इतनी खो जाते हैं कि अपने सेहत को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, स्वस्थ शरीर और शांत मन ही खुशहाल जीवन की असली पहचान है। इसलिए सुबह सवेरे में हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ आसान योगासन और छोटी छोटी स्वस्थ आदतें, जिन्हें अपनाकर आप अपने दिन को बना सकते हैं और भी बेहतर। तो चलिए दोस्तों, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए सुबह सवेरे के आज के इस योग सेगमेंट में। दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में घंटों बैठ कर काम करना, गलत पोस्चर, कम फिजिकल एक्टिविटी और तनाव के कारण बहुत से लोग कमर दर्द यानी बैक पेन की समस्या से परेशान रहते हैं। कई लोगों का स्लिप डिस्क या डिस्क की परेशानी भी हो जाती है, जिसमें कमर से लेकर पैरों तक दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है। योग शरीर को मजबूत बनाने, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और मसल्स को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर दर्द बहुत ज्यादा हो, पैरों में सुन्नपन हो या डॉक्टर ने मना किया हो, तो योग विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान और लाभदायक योगासन। सबसे पहला है मकरासन। ये कमर को आराम देने वाला आसन योग है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को मोड़कर सिर के नीचे रखें, पैरों को थोड़ा फैलाकर शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। 5 से 10 मिनट तक आराम करें। इसके फायदे हैं, कमर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, रीढ़ पर दबाव कम करने में मदद करता है, बैक पेन में रिलैक्सेशन दे।

अगला है भुजंग आसन, रीढ़ की मजबूती के लिए। इसे कैसे करें? पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के पास रखें, धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं, कमर पर ज्यादा जोर ना डालें, 10 से 15 सेकंड तक रुकें। इससे रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है, पीठ की मसल्स को मजबूत करता है, लंबे समय तक बैठने से होने वाले स्टिफनेस कम कर सकता है।

अगला है मार्जरी आसन वितिलासन, कैट काउ स्ट्रेच कहते हैं। ये स्पाइन मोबिलिटी के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। इसे करने के लिए चारों हाथ पैरों के सहारे आ जाए, सांस लेते हुए कमर को नीचे की ओर हल्का झुकाए और सिर ऊपर करे, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर गोल करें और सिर नीचे करें। धीरे धीरे 8 से 10 बार दोहराएं। इसके फायदे हैं, रीढ़ की जकड़न कम करने में मदद होता है, कमर और गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर का पोस्चर बेहतर होता है।

अगला है बालासन। ये कमर को रिलैक्स करने के लिए है। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठे, शरीर को आगे की तरफ झुकाएं, माथे को जमीन पर रखें और हाथ आगे फैलाएं। 20 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। इससे पीठ और कमर की मसल रिलैक्स होती हैं, तनाव कम होता है, शरीर को आराम मिलता है। अगला है सेतु बंधासन। ये कमर और पीठ की मजबूती के लिए है। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़े और पैर जमीन पर रखें। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, कुछ सेकंड रुककर वापस आए। इसके फायदे हैं, लोअर बैक मसल्स मजबूत होती हैं, रीढ़ को सपोर्ट मिलता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है।

अगला है ससंग आसन। इसे करने के लिए वज्रासन में बैठे, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, माथे को जमीन के पास लाए, आराम से वापस आए। इसके फायदे हैं कमर की स्टिफनेस कम करने में मदद, शरीर और मन को शांत करता है। दोस्तों, बैक पेन और डिस्क प्रॉब्लम वालों के लिए खास सावधानियां। योग धीरे धीरे करें, झटके से कोई मूवमेंट ना करें, भारी वजन उठाने से बचें, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठे, बैठते समय पोस्चर सही रखें, दर्द बढ़ने पर तुरंत रुक जाएं। याद रखिए दोस्तों, कमर हमारी शरीर का मजबूत आधार है। थोड़ा सा समय योग को देकर हम अपने रीढ़ और शरीर को बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो आज से शुरुआत कीजिए धीरे धीरे नियमित रूप से और सही तरीके से योग का अभ्यास। इसी के साथ आज का योगासन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे में एक नए योग और नई स्वस्थ जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत, आवाज दी है आशा भोसले और कुमार शानू ने।

श्रोताओं, आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। अब रुक करते हैं सुबह सवेरे के हेल्थ सेगमेंट की ओर। दोस्तों, बारिश का मौसम जहां एक तरफ ठंडी हवाओं, हरियाली और सुहाने मौसम का आनंद लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ इस मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश और वायरल इन्फेक्शन जैसी समस्या भी बढ़ जाती है। बारिश में मौसम बार बार बदलता है, नमी बढ़ जाती है और कई तरह के वायरस तेजी से फैल सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखकर हम खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं रेनी सीजन में सर्दी जुकाम से बचने के कुछ जरूरी हेल्थ टिप्स। पहला है, भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदले। दोस्तों, अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो लंबे समय तक गीले कपड़ों पर ना रहे, तुरंत सूखे कपड़े पहने। बाल गीले हो तो अच्छी तरह सुखाए, इससे शरीर का तापमान सामान्य रहता है और सर्दी जुकाम होने का खतरा कम होता है। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। बारिश के मौसम में बहुत ठंडा पानी पीने से गले में परेशानी हो सकती है। दिन भर पर्याप्त पानी पिए। गुनगुना पानी गले को आराम देता है, ये गले की खराश में राहत मिलती है और शरीर हाइड्रेटेड रहता है। अदरक, तुलसी और गर्म पेय का सेवन। बारिश के मौसम में घर के रसोई में मौजूद कुछ चीजें बहुत उपयोगी हो सकती है, जैसे अदरक वाली चाय, तुलसी का खारा, हल्दी वाला दूध। इसके फायदे हैं, गले को आराम मिलता है, शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट मिलता है। हाथों की सफाई का ध्यान रखें। बारिश के मौसम में संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए बाहर से आने के बाद हाथ धोए। बिना हाथ धोए आंख, नाक और मुंह को ना छुए। पर्याप्त नींद ले। दोस्तों, कम नींद से शरीर कमजोर महसूस कर सकता है, इसलिए रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। इससे शरीर को आराम मिलता है, ऊर्जा और इम्यूनिटी बेहतर होती है। दोस्तों, बारिश का मौसम आनंद लेने का मौसम है, बस जरूरत है थोड़ी सी सावधानी और अच्छी आदतों की। साफ सफाई, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम और थोड़ा सा देखभाल से हम इस मौसम में भी पूरी तरह स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। इसी के साथ आज का हेल्थ सेगमेंट यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे में एक नए हेल्थ टिप के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। आइए सुबह सवेरे के अंत में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत, फिल्म जुदाई का ये टाइटल ट्रैक।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आपातकालीन श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर ज्यूरो का तन प्रोग्राम तमे मिलिम बिले कपे जब सुर नन तन पुमे तपतो दो सिरो कपु युलु कोइन सी दुयो अंका। Environment, Forest and Climate Change का मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हुए अनाउंस मलालू को नेन अरुणाचल प्रदेश का लोहित डिस्ट्रिक्ट का ग्लो लैब में 101 रामसर साइट वा मुबुने हला लुको ने सोशल मीडिया पोस्ट और मिनिस्टर डेवलपमेंट में डिस्क्राइब मलालू नेन सी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाटर एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स का इम्पोर्टेंट स्टेप पल्ली दो हला लुको ने। मिस्टर यादव हुए लुको नेन Sika Pristine Freshwater Lake in the Eastern Himalaya hu, Biodiversity Hotspot hu, Kamlang Tiger Reserve la Wildlife Sanctuary hodo hala lukone. Minister hu lukone tane Glow Lake hu, Last Vegetation lo surrounded do ho lange la alyangwe pai Sanika species la alyampule la Guai Orchid species hu, Sika site la Moluka catchment hodo hala lukone. हो मिनिस्टर हु लुको नेता ने स्टेट का पर्स रामसर साइट पाइने हु सिग्निफिकेंट माइलस्टोन पाली दो हला लुको ने। हो चीफ मिनिस्टर पेवा खांडू हु मोका ग्रेटिट्यूड में एक्सेन मला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ला यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव में हिस्ट्रिक रिकॉग्निशन बिकोपा मने हला लुको ने। Department of Youth Affairs, Government of Arunachal Pradesh, in collaboration with My Bharat and the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, whose state hoka Youth Atami, Gems of India challenge Arunachal Pradesh, a unique digital storytelling ho participate mudo palone. Hoseka initiative meka lanaga aim hu rich heritage, culture, traditions, tourism la, inspiring local stories of the state me sodupamune hala lukone. Her department, her educational institutions, youth organizations, NSS volunteers, My Bharat members, startups, tourism stakeholders, NGOs, la, local communities, atami, actively participate mala, Sanchan Himi atami, motivate mala, ambassador of Arunachal Pradesh ka, vibrant cultural and natural heritage palyudopa, mudapalone, hala, lukone. हो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट हु माय भारत इवेंट पेज का ट्रोपा इवेंट डिटेल्स मी ऑफिशियल पेज हो कंप्लीट डिटेल्स मी एक्सेस मला रजिस्टर मला केंदो हला लुकोने। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हु ऑरेंज अलर्ट मी ईस्ट कमिंग कमले लोअर सुबनश्री पापुमपारे लोहित नामसाई लालोंगनिंग डिस्ट्रिक्ट एंड अरुणाचल प्रदेश ओपा इश्यू मने हला लुकोने। होसेका डिस्ट्रिक्ट आता का isolated places so yapungela dolya bela ho modoya si hu urola da hokindo hala lukone. Hoge mi tusila India Meteorological Department hu yellow alert me alyaina hingeta district hopa isu mubune hala lukone. Ho affected regions oka residents atami alert la dudopa ho necessary precautions me ladopa advice mane hala lukone. Ho unnecessary travels me avoid mala हो कंसर्न एजेंसीज का एडवाइजरीज इशू मन में पोलो मुदोपा लुने। अरुणाचल प्रदेशों का साझी नातुंग है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 हो फर्स्ट इंडियन माउंट यूमन इन हिमाचल प्रदेशों का बैकलिप पार्पम मुनिपा आदो हला लुकोने। नातुंग का अचीवमेंट लाने में कंग्रेचुलेट बिला डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोनामेन है सोशल मीडिया पोस्ट हो लुने ने। नातुंग का रिमार्केबल पीठ है एक्सेप्शनल करेज डिटर्मिनेशन एडवेंचर में रिप्लेक मुदो हो अरुणाचल प्रदेश ला नेशन का यूथ अतामी इंस्पायर मुदो हला जुकोने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईटानगर कैपिटल रीजन है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में आलिने का डबेनी आलो हो 8 बजे होकला 9 बजे लोईपा देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर हो सिटी वाइड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज का आगे हो मकिनो हला लुकोने। मॉक ड्रिल का पार्ट पा एयर रेड सीरन में 8 बजे हो मकिनो हो 15 मिनट्स ब्लॉक आउट अक्रॉस ईटानगर कैपिटल रीजन हो 8 बजे हो कुला 8:15 लोई पा मकिनो हो सिटीजन आता मी रिक्वेस्ट मला लाईट मे

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट के साथ, इससे छोटी सी अंतराल के बाद।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण FM 103.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर। दोस्तों, बदलती दुनिया के साथ हर पल कुछ नया गत रहा है, ऐसे में दिन की शुरुआत सही और भरोसेमंद जानकारी के साथ हो तो पूरा दिन बेहतर बन जाता है। इसलिए हम लेकर आते हैं देश, दुनिया और अपने अरुणाचल प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय ताजा खबरें पर एक नजर। संसद के मॉनसून सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा। संसद के मॉनसून सत्र में आज सरकार कई अहम विधेयकों और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ा रही है। विपक्ष महंगाई, रोजगार और विभिन्न राज्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। नीट यूजी 2026 OMR सीट विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नीट यूजी 2026 के कुछ अभ्यर्थियों ने OMR सीट में कथित गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। छात्रों ने मूल्यांकन प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा की मांग की है। मामले की सुनवाई पर देश भर के लाखों विद्यार्थी की नजर बनी हुई है। तमिलनाडु की राजनीति में हलचल। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक मामले में पुलिस कार्रवाई की खबर सामने आई है, जिसके बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि जबकि सत्तारूढ़ दल ने कार्रवाई को राजनीतिक बताया है। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शेयर बाजार और निवेशकों की नजर RBI की मौद्रिक नीति बैठक पर। पूरे देश के निवेशकों की नजर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर बनी हुई है। ब्याज

और महंगाई को लेकर लिए जाने वाले फैसलों का असर शेयर बाजार, बैंकिंग और आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। एयर इंडिया की उड़ान में तेज टर्बुलेंस। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दौरान एयर इंडिया के विमान को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। विमान सुरक्षित उतर गया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। घटना के बाद एयरलाइन ने तकनीकी और मौसम संबंधी समीक्षा शुरू कर दी है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ईरान ने हॉर्मुज जलदमरू मध्य में जहाजों पर अधिक नियंत्रण की मांग की। ईरान ने हॉर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर अधिक अधिकार की मांग की है। इस बीच ओमान की मध्यस्थता में समुद्री मार्ग को सामान्य बनाने के प्रयास जारी है। इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी आखिरी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौते को लेकर कहा कि यह एक समझौता का आखिरी अवसर हो सकता है। उनके बयान के बाद मध्य पूर्व में कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रूस यूक्रेन पर युद्ध पर नए कूटनीतिक प्रयास। यूरोपीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए नई बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही यूक्रेन को सुरक्षा और मानवीय सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक असमानता कम करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों से सामाजिक और आर्थिक असमानता कम करने के लिए तेज और समावेशी नीतियां अपनाने की अपील की है। संगठन ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। तो दोस्तों, ये था आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। एएफटीएफ अनाउंसेस मार्च फॉर स्क्रैपिंग 80:20 रिक्रूटमेंट रेशियो। अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट के चेयरमैन तदक नालो ने मंगलवार को 8 अगस्त को शांतिपूर्ण मार्च निकालने की घोषणा की। इस मार्च के जरिए 80:20 के जॉब रिजर्वेशन अनुपात को खत्म करने की मांग की जाएगी। मंगलवार को यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एएफटीएफ के चेयरमैन ने कहा कि यह मार्च भारत छोड़ो आंदोलन की तारीख पर ही निकाला जाएगा। ये 80:20 अनुपात को खत्म करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक होगा। ओवर 60 ऑर्गेनाइजेशन कंडेम स्लैपिंग ऑफ एनएसए ऑन प्रणब धोले, डिमांड हीज इमीडिएट रिलीज। 7 से ज्यादा संगठनों, ट्रेड यूनियनों और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करने वालों समूहों ने आदिवासी अधिकारों के कार्यकर्ता प्रणब धोले पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की निंदा की है। साथ ही उन्होंने धोले और असम के काजीरंगा में जमीन के लिए चल रहे संघर्ष के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए अन्य सभी लोगों की तुरंत रिहाई की मांग की है। सेल्फ स्टाइल एंटी ड्रग एक्टिविस्ट सेंटेंस टू लाइफ फॉर असोल्ट एक्सटोर्शन। पापमपारे जिले के सेशंस कोर्ट ने खुद को ड्रग विरोधी कार्यकर्ता बताने वाले तोगो रिबे और उनके साथी किशोर तमांग को 11 साल पुराने फिरौती के लिए अपहरण के मामले में दोषी ठहरते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 12 आवर पासीघाट बंद पासिस ऑफ पीसफुली। मंगलवार को पूर्वी सियांग जिले में बोगोंग बांगो कबंग और सहयोगी संगठनों की ओर से बुलाया गया 12 घंटे का बंद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कौसाब डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैंड्स ओवर ₹8 लाख एस फ्लड रिलीफ फॉर कई पंजौर। अरुणाचल प्रदेश के सर्विस एसोसिएशन के परिसंघ के कई पंजौर जिला इकाई के 6 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसके प्रमुख अध्यक्ष तोको लेंतो और महासचिव चुकू एपा थे, मंगलवार को यहां जिला सचिवालय में कई पंजौर के डिप्टी कमिश्नर अंकिता मिश्रा को ₹8 लाख का चेक सौंपा। जेएसी डिमांड्स कमेंसमेंट ऑफ वर्क ऑन एएलबी रोड। आकाजा लिकावाली बाम में सड़क की खराब हालत से परेशान होकर जिगो येगो स्टूडेंट्स यूनियन और बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन की एक संयुक्त एक्शन कमेटी ने मंगलवार को राज्य सरकार से एएलवी सड़क का काम तुरंत शुरू करने की मांग की।
इंटरनेशनल क्लॉड

लेफर डे सेलिब्रेटेड। अरुणाचल प्रदेश के पक्के ईगल नेस्ट सेसो लैंडस्केप की खास प्रजाति क्लडेड लेफर्ट के संरक्षित के महत्व को उजागर करने के लिए पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व ने मंगलवार को जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के जरिए इंटरनेशनल क्लडेड लेफर्ट डे मनाया। दोस्तों, ये था आज के न्यूज सेगमेंट। चलिए मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं ये खूबसूरत गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, और अगर उस सुबह की शुरुआत हो ताजा मौसम की जानकारी और मधुर संगीत के साथ, तो पूरा दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के ईटानगर के मौसम का हाल। आज सुबह ईटानगर में आसमान में बादलों का अच्छा खासा डेरा बना हुआ है। मौसम नम और सुहावना महसूस हो रहा है, लेकिन दिन के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। सुबह का तापमान लगभग 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हल्की ठंडी हवा चलेगी और धूप बहुत कम समय के लिए ही निकलने की संभावना है। दोपहर तक तापमान बढ़कर लगभग 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उमस महसूस हो सकती है, लेकिन आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना कम है। बादल लगातार बने रहेंगे। आज दोपहर से शाम के बीच बारिश या रुक रुक कर बौछारें पड़ने की अच्छी संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के लिए भारी वर्षा की संभावना जताई है, इसलिए मौसम पर नजर बनाए रखें। शाम के समय मौसम काफी ठंडा और खुशनुमा हो जाएगा। बारिश होने पर तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। तो आज ईटानगर में बादलों का दबदबा रहेगा। दोपहर और शाम में बारिश की अच्छी संभावना बनी हुई है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना बिल्कुल ना भूले। तो मौसम का आनंद लीजिए, सुरक्षित रहिए, और अब बढ़ते हैं एक खूबसूरत सदाबहार गीत के साथ। सुनते हैं अलका याग्निक कुमार शानू की आवाजों में फिल्म दीवाना से ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदा बहार। आइए इस कार्यक्रम के अंत में एक और सदा बहार गीत से सुनते हैं, फिल्म जीत से। आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ

0: रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवी वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवी वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे ओलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
4: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
5: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में दो अहम प्रस्ताव रखे हैं।

0: ये हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिला

0: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV

0: 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: हेलो ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। कार्यक्रम है हेलो ईटानगर। दोस्तों कहते हैं कि जिस दिन की शुरुआत अच्छी सोच, अच्छी जानकारी और अच्छे संगीत से हो, वो पूरा दिन यादगार बन जाता है। तो बस अगले कुछ पलों तक हम आपके इसी खूबसूरत सफर के साथी बनने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम देखेंगे टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट और साथ ही टुडेज डे स्पेशल। उसके साथ ही सुनेंगे कुछ खूबसूरत हिंदी फिल्मी गीत। सबसे पहले आइए देखते हैं टुडे इन हिस्ट्री पर एक नजर। आइए एक नजर डालते हैं भारत के इतिहास पर एक नजर। वर्ष 2019 अनुच्छेद 317 और 35A के प्रावधानों में परिवर्तन। 5 अगस्त 1900, फिर से सुनिए, 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 317 को अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और अनुच्छेद 35A को समाप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करने की घोषणा की गई। ये स्वतंत्र भारत की संवैधानिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। 2020 अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन। 5 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में देश के अनेक धार्मिक एवं राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह घटना भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जाती है। 1907 प्रसिद्ध अभिनेता नीलू पुगले का निधन, बल्कि जन्म दिवस से जुड़ी स्मृति। 5 अगस्त भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े कई रचनाकारों के योगदान को याद करने का अवसर भी रहा है। इसी दिन विभिन्न वर्षों में साहित्य, कला और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियां दर्ज की गई। 5 अगस्त के को लिए गए संवैधानिक और प्रशासनिक निर्णयों ने भारत की संघीय व्यवस्था, शासन प्रणाली और राष्ट्रीय विमर्श पर गहरा प्रभाव डाला। इसलिए यह तारीख आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में विशेष महत्व रखती है। रुक करते हैं विश्व इतिहास पर एक नजर। 1962 नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी। 5 अगस्त 1962 को दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्होंने लगभग 27 वर्ष जेल में बिताए और आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 1914 अमेरिका ने नतरस्ता की घोषणा की। 5 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को तटस्थ घोषित किया। बाद में 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। वर्ष 1884 स्टेचू ऑफ लिबर्टी की आधारशिला से जुड़ा कार्य पूरा। 5 अगस्त 1884 को स्टेचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा के लिए आधार निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई।

यह स्मारक आगे चलकर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का वैश्विक प्रतीक बना। 2010 से चिली के 33 कनिकों का पसना। 5 अगस्त 2010 को चिली के सेंट जोजे माइन में खदान धंसने से 33 कनिक भूमिगत पस गए। लगभग 69 दिनों तक चले ऐतिहासिक बचाव अभियान के बाद सभी कनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये दुनिया के सबसे सफल बचाव अभियानों में गिना जाता है। तो दोस्तों, 5 अगस्त का दिन भारत के संवैधानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी रहा है। वहीं विश्व इतिहास में यह दिन शांति, मानवाधिकार, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाओं के लिए याद किया जाता है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर तारीख अपने साथ परिवर्तन, संघर्ष और नई शुरुआत की प्रेरणादायक कहानियां लेकर आती हैं। अब समय है एक खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहिए हेलो ईटानगर, सिर्फ अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर। आइए रुक करते हैं इम्पोर्टेंट डे स्पेशल की ओर। आज 5 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अगस्त को ही ये क्यों मनाया जाता है? 5 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि 5 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में देश भर में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं विशेषकर भारतीय हथकरघा उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया था। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में हर वर्ष 5 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा क्या है? हथकरघा हैंडलूम वो पारंपरिक करघा है जिसे हाथों से चलाकर कपड़ा बुना जाता है। भारत की हथकरघा परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है और यह देश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में हथकरघा का महत्व। भारत विश्व के सबसे बड़े हथकरघा उत्पादक देश में से एक है। इसी उद्योग से लाखों बुनकर और कारीगर जुड़े हुए हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और पारंपरिक कला एवं संस्कृति को जीवित रखता है। भारत के प्रसिद्ध हथकरघा परंपराओं में शामिल है बनारसी सिल्क, कांजीवरम साड़ी, पश्मीना सोल, असम की मुगा और एरी सिल्क, पोचमपल्ली इकट, चंदोरी, महेश्वरी वस्त्र। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय बुनकरों को सम्मान करना, पारंपरिक हस्तशिल्प को और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे पहलुओं को प्रोत्साहित करना है। तो 5 अगस्त को कई प्रमुख संयुक्त राष्ट्र घोषित अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया नहीं जाता है। इस दिन का सबसे प्रमुख आधिकारिक आयोजन भारत का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ही है। तो आइए इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम संकल्प ले कि लोकल खरीदेंगे, भारतीय बुनकरों का सम्मान करेंगे और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और अब इसी खूबसूरत संदेश के साथ बढ़ते हैं इस एक सुकून भरे मधुर गीत की ओर। सुनते रहिए हेलो ईटानगर।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगा हर्ट्स पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। इस पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च

0: प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेन देन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि को वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य निर्णय में केंद्र सरकार को वैध थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस वाले वाहनों को ईंधन बिक्री से संबंधित पायलट परियोजना विकसित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने प्रस्ताव किया है कि गैर बीमाकृत वाहनों को कवरेज प्राप्त होने तक पेट्रोल पंप से ईंधन न दिया जाए। न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्र की एक खंडपीठ ने कहा कि देश में लगभग 56% वाहन गैर बीमाकृत हैं और ये स्थिति चिंताजनक है। न्यायालय ने ऐसे वाहनों की पहचान के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण तथा केंद्र को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान आधारित बीमा सत्यापन विकसित करने और मोटर वाहन अधिनियम के अनुपालन में सुधार सुनिश्चित करने को कहा है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ
3: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. An Indian flag commercial vessel, MSV Faiz Noor Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. According to reports, the Indian flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Port Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. In a statement, Minister of External Affairs, MEA, said,

0: सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई कहानी जन्म लेती है। कहीं किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म का ट्रेलर इवेंट तहलका मचा देता है, तो कहीं किसी वेब सीरीज का नया सीजन दर्शकों के दिलों पर राज करने लगता है। कभी किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चर्चा में रहता है, तो कभी किसी स्टार का नया लुक वायरल इंटरव्यू या सोशल मीडिया पोस्ट बन जाता है पूरे दिन की सबसे बड़ी सुर्खी। तो आइए आज के ताजातरीन बॉलीवुड अपडेट्स पर एक नजर देखते हैं। तब्बू पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। आज अभिनेत्री तब्बू ने अपनी पहचान और एआई से बनाए जा रहे फर्जी वीडियो एवं तस्वीरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी तस्वीर, आवाज और डिजिटल पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर कानूनी सुरक्षा की मांग की है। अब सिर्फ फिल्मों की नहीं, सितारों की डिजिटल पहचान की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सनी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी परिचय। बंटवारा 1947 के प्रमोशनल इवेंट में सनी देओल और प्रीति जिंटा साथ दिखाई दिए। दोनों की केमिस्ट्री देखकर फैंस पुराने दौर की यादों में खो गए और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गई। नोरा फतेही ने डेटिंग अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। काफी समय से चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए नोरा फतेही ने मोरक्को के फुटबॉलर यशिन बोनू के साथ अपने रिश्ते की खबरों को लेकर कहा कि वे केवल अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने बोनू की तारीफ करते हुए उन्हें बहुत अच्छे इंसान बताया। इमरान हाशमी ने पूरी की आवारा पंतों की शूटिंग। इमरान हाशमी ने आधिकारिक रूप से आवारा पंतों की शूटिंग पूरी कर ली है। अब फिल्म फर्स्ट प्रोडक्शन में चली गई है और स्वतंत्रता दिवस के आसपास इसके रिलीज को लेकर उत्साह बढ़ गया है। फरहान अख्तर ने अफवाहों पर दिया जवाब। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फरहान अख्तर एक बड़े प्रोजेक्ट से अलग हो गए हैं। इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं उस प्रोजेक्ट से बाहर कैसे हो सकता हूं जिसे मैंने कभी साइन ही नहीं किया। उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो दोस्तों हम इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौटेंगे और भी ताजा तरीन बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। बने रहिए फिल्मी गपशप पर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ताजा तरीन अपडेट्स पर। दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत का निधन। लगान, गजनी और कई यादगार फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता प्रदीप रावत का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉलीवुड जगत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सलमान खान ने शो में किया मजेदार मजाक। एक रियलिटी शो के दौरान सलमान खान ने रैपर बादशाह के साथ हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने हेल्थ अपडेट दी। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने बताया कि अपनी फिल्म मैसा की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर हिप इंजरी हुई थी। उन्होंने फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब उनकी रिकवरी अच्छी तरह चल रही है। प्रीति जिंटा और ब्रेट ली की पुरानी अफवाहें फिर चर्चा में। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने वर्षों पुरानी डेटिंग अफवाहों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके और प्रीति जिंटा के बीच सिर्फ दोस्ती रही है। ये इंटरव्यू फिर से वायरल हो गया है। किंग को लेकर बड़ा उत्साह। शाहरुख खान की आगामी फिल्म किंग को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में गिन रहे हैं इसे और इसकी तैयारियों पर लगातार नजर रखी हुई है। दोस्तों हम लौटेंगे और भी ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। सुनते हैं क्योंकि फिल्म का ये टाइटल ट्रैक।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद, बने रहिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप में।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। अगले शुक्रवार के रिलीज को लेकर बड़ी हलचल है। 7 अगस्त को कई नई हिंदी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें ओ माई डॉग, आर्यभट्ट का जीरो और हनुमान अंश जैसी कंटेंट ड्राइवन फिल्में शामिल है। थिएटर मालिकों को अच्छी वीकेंड की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस वीकेंड की बॉक्स ऑफिस जंग, इंडस्ट्री में अब चर्चा इस बात की है कि 14 से 15 अगस्त के आसपास रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस मुकाबला कैसा रहेगा। ट्रेड एनालिसिस का मानना है कि यह साल का सबसे बड़ा सिनेमाई वीकेंड हो सकता है। बॉलीवुड के बायोफिक और ऐतिहासिक फिल्मों का दौर जारी। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार बड़े बैनर आने वाले महीनों में ऐतिहासिक, पौराणिक और वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्मों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इंडस्ट्री का मानना है कि दर्शकों की रुचि अब बड़े विजुअल अनुभव और मजबूत कहानियों की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज बॉलीवुड में हर तरफ नई हलचल देखने को मिली। कहीं कानूनी लड़ाई की चर्चा रही, कहीं प्रमोशन का रंग चढ़ा, तो कहीं नई फिल्म और आने वाली बॉक्स ऑफिस मुकाबले ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दी है। यही है बॉलीवुड की खासियत, हर दिन नई कहानी, नया रोमांच और नई सुर्खियां। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, सुनते हैं लक्ष्य फिल्म का ये टाइटल ट्रैक।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। आइए रुक करते हैं इंडियन टेलीविजन यानी छोटे पर्दे की खबरों पर एक नजर। दोस्तों, आज छोटे पर्दे की दुनिया में रियलिटी शोज, नए प्रोमो, टीवी सितारों के बयान और सीरियल्स के बड़े ट्विस्ट चर्चा में रहे। आइए जानते हैं विस्तार से। बिग बॉस 20 का नया प्रोमो बना चर्चा का विषय। सलमान खान के शो बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रोमो में सलमान कहते हैं, नजर आते हैं कि जो करण अर्जुन में हुआ वो अब बिग बॉस में होगा। इसके बाद से फैंस शो की थीम और संभावित ट्विस्ट को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी 15 में गौरव खन्ना हुए कायल। स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 के शूटिंग के दौरान अभिनेता गौरव खन्ना को रबर बुलेट वाले स्टंट में चोट लग गई। उन्होंने इसे दर्दनाक अनुभव बताया, लेकिन साथ ही कहा कि शो का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। देवोलीना भट्टाचार्य की भावुक अपील। टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य ने बताया कि उनकी मां असम के बाढ़ से प्रभावित इलाके में फंसी हुई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से प्रार्थना और सहयोग की अपील की। ये खबर पूरे टीवी जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोकअप 2 में शिवांगी जोशी पर नया विवाद। लोकअप 2 में शिवांगी जोशी को लेकर एक सह प्रतियोगी के बयान ने नई बहस चेर दी है। सोशल मीडिया पर दर्शक इसे मुद्दे पर दो गुटों में बटे हुए हैं और शो की निष्पक्षता पर भी चर्चा हो रही है। रुबीना दिलेक की तबियत बिगड़ी। खतरों के खिलाड़ी 15 के एक हाई रिस्क हेलीकॉप्टर और वाटर स्टंट के दौरान रुबीना दिलेक की तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई गई। दोस्तों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और म्यूजिकल ब्रेक का। आइए सुनते हैं लकी नो टाइम फॉर लव फिल्म से ये बेहद खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और अदनान सामी की आवाजों में।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे की अपडेट्स पर एक नजर, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी टू में बड़ा खुलासा। एकता कपूर के चर्चित शो क्योंकि सांस भी कभी बहू थी टू में कहानी नया मोड़ लेने वाली है। प्रोमो के अनुसार तुलसी जल्द ही समायरा की साजिश का पर्दाफाश करेगी, जिससे शांति निकेतन परिवार में बड़ा तूफान आने वाला है। यह रिश्ता क्या कहलाता है में नए विलन की एंट्री। लोकप्रिय शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही एक नए विलन की एंट्री होने वाली है। नई कहानी में मायरा और अभीरा की जिंदगी में कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। क्रिएटर इकोनॉमी पर टीवी कलाकारों का नया फोकस। टीवी अभिनेता और कॉमेडियन गौरव गेरा को पावर क्रिएटर अवार्ड्स 2026 की जूरी में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल क्रिएटर्स भारतीय मनोरंजन उद्योग की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बन चुकी है। टीवी इंडस्ट्री में नए चेहरों को मिल रहे बड़े मौके। चैनल और प्रोडक्शन हाउस इस समय नए कलाकारों और नई कहानियों पर जोर दे रही है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के अनुसार आने वाले महीनों में कई नए फिक्शन और रियलिटी शोज की घोषणा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, छोटे पर्दे पर आज भी खबरों का थरका कम नहीं रहा। कहीं बिग बॉस के नए सीजन की हलचल है, कहीं खतरों के खिलाड़ी के स्टैंड चर्चा में है, तो कहीं आपके पसंदीदा डेली सोप्स में आने वाली बड़े ट्विस्ट दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रही है। टीवी की दुनिया हर दिन बदल रही है और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे सबसे ताजा, सबसे भरोसेमंद और सबसे मनोरंजन।

श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। आइए कार्यक्रम के अगले भाग में देखते हैं आज के ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग गाने के ऊपर एक नजर। सबसे पहला है तू ही रिश्ता, ये भूत बंगला फिल्म का, जिसे गाए हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने। इस समय ये गाना रोमांटिक रील्स का सबसे बड़ा पसंदीदा ट्रैक बना हुआ है। इंस्टाग्राम पर कपल्स और सिनेमैटिक वीडियो में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। यूट्यूब पर भी यह लगातार ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट में बना हुआ है। अगर आपको स्लो मोशन या ट्रेवल रील बनानी है तो ये गाना इस समय हॉट फेवरेट है। अगला है सितारे, ये 21 फिल्म का है, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। ये गाना इमोशनल और मोटिवेशनल रील्स में खूब वायरल हो रहा है। इसके लिरिक्स और मेलोडी युवाओं के बीच काफी पसंद की जा रही है। अगला है कॉकटेल 2 फिल्म का बंडू 2.0। पुराने सुपरहिट बंडू का नया वर्जन सोशल मीडिया पर फिर से छा गया है। फ्रेंडशिप, ट्रैवल और कॉलेज लाइफ वाली रील्स में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। अगला है आवारापन 2 से वी जुनून। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया। खासकर रोमांटिक और हार्ट ब्रेक रील्स में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अगला है अरिजीत सिंह के गाए तेरे इश्क में गीत। ये गाना लव स्टोरी, वेडिंग और कपल वीडियो का पसंदीदा ट्रैक बना हुआ है। इसकी मेलोडी लोगों को खूब पसंद आ रही है। तो दोस्तों, ये था आज के सबसे ट्रेंडिंग और वायरल गाने। आज की फिल्मी गपशप में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और प्यारा गीत, के और के एस चित्रा की आवाजों में।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही आज का फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नोरे ओलिया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को

0: हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में अविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने वाला बहुपक्षवाद समय की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने 17 देशों से आए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति सुरक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेन देन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। सरकार ने सोशल मीडिया पर में आ रहे उन दावों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी और डिजिटली जोड़ तोड़ है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध दावों की सरकार को सूचना देने को कहा है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 दिसंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who are on board the vessel, were rescued safely. According to reports, the Indian-flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Port, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. In a statement, Ministry of External Affairs said targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The Supreme Court has directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speak up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. The Medical Counseling Committee, MCC, will begin Round 1 registration for NEET UG Counseling 2026 today, according to the official schedule.

0: choice filing and see the allotment process on the MCC portal. Trishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
1: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussions on culture. The Minister of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build consensus on key areas ahead of the BRICS culture ministers meeting. Meanwhile, the 13th BRICS education ministers meeting and the 3rd BRICS senior officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said that these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. The summer annuals of Amrit Udhyan at Rashtrapati Bhavan will open for the public from the 16th of this month. People can visit the Amrit Udhyan till 15th of September. During this period, it will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. However, the Udhyan will remain closed on all Mondays for maintenance. Entry to Amrit Udhyan will be free of cost. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar Rai said reform multilateralism reflecting aspirations of the global south is a need of the hour as the global order transforms. The Dr. Jaishankar held an interaction with permanent representatives from United Nations from 17 countries who are visiting India on a study tour. In a social media post, the External Affairs Minister said that the discussions touched upon technology, maritime safety, peacekeeping, development partnership and disaster response. The IMD has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. In Assam, heavy rainfall continues disrupting normal life in several parts of the state. The Brahmaputra and many of its tributaries are flowing close to the danger level at several locations. In Kerala, heavy rain will continue across the state today, although the intensity is expected to be lower than yesterday. In badminton, India's Isharani Barua defeated Lee So-hee of South Korea in the quarter finals at the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in Asan today. And that's the end of this news bulletin.
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम लौटेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
4: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
2: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपका अपना आरजे कारगे और एक बार फिर हाजिर हूं लेकर

दर्शकों, यादों, दोस्ती और प्यार भरे एहसासों से सजा हुआ आपका फेवरेट म्यूजिकल प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, ये वो खास महफिल है जहां गाने चलते हैं आपके पसंद के और जुड़ते हैं आपके दिल के जज्बातों से। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपकी पसंद का गीत गूंजे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, तो भेजते रहिए अपना मैसेज और साथ ही गाने का नाम, सिंगर के नाम, फिल्म का नाम और अपने नाम और जगह लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आए लेते हैं आज का पहला मैसेज, और ये मैसेज हमें आया है हर्षित गोस्वामी जी की तरफ से बोकाघाट असम से। हर्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। आपकी पसंद है एक तू ही यार मेरा गीत फिल्म पति पत्नी और वो से। दोस्तों, ये गाना दोस्ती, प्यार और उस खास रिश्ते के एहसास को बयां करता है जहां एक अपना इंसान जिंदगी में बहुत खास बन जाता है। तो हर्षित गोस्वामी जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों अब बारी है असम से आए एक प्यारे मैसेज की। ये मैसेज भेजा है ओर्की गोस्वामी ने ज्योतिपुर असम से। ओर्की जी अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओर्की जी आपने एक तेलुगु फिल्म का सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। ओर्की जी आपका प्यार और आपकी फरमाइश हमें बहुत पसंद है, लेकिन अरुण एफएम के रेडियो ऑन डिमांड प्रोग्राम में हम फिलहाल सिर्फ बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के गानों को ही शामिल करते हैं, इसलिए अगली बार जब भी आप मैसेज भेजें तो कृपया बॉलीवुड सॉन्ग का नाम, फिल्म और सिंगर के नाम जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम आपकी पसंद का गीत अपने प्रोग्राम में शामिल कर सके। फिलहाल और कीजिए आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार बॉलीवुड नगमा फिल्म गदर।

एक प्रेम कथा का एक दिल को छू लेने वाला गीत। उम्मीद है और कीजिए ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए दोस्तों सुनते हैं ये खूबसूरत गीत रेडियो ऑन डिमांड सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

दोस्तों बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। ये हमें आया है अरुणाचल प्रदेश से ही। एक प्यारी फरमाइश चाचा वांगसू जी की तरफ से, तिराप डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से। चाचा वांगसू जी, अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पसंद है मैंने जिसको चाहा मिल गया गीत फिल्म फिदा से, और इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलीशा चिनोई ने। चाचा वांगसू जी, हमसे जुड़ने के लिए और आपकी इस प्यारी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा और खो जाते हैं प्यार भरी धुनों के इस सफर में, सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

और दोस्तों, अब रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में बारी है अगले मैसेज की। और ये मैसेज हमें आई है असम से, भेजने वाले हैं जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंटिफी और दौरमकिरी रोंगफी ने। सारी हाजान कार्बे आंगलोंग असम से, आप सभी का आरोन एफएम पर बेहद स्वागत है। और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों बाइकॉन रमेश, रोनू, लकी और बीमल को। आपकी सॉन्ग फरमाइश है तेरी नीली नीली आंखें, गीत को फिल्म जाने अनजाने से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। जोगेंद्र, सोनाली और धर्म किरे जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश और अपने दोस्तों के नाम किए गए

और दोस्तों अब बारी है आसाम से आई एक और दिल को छू लेने वाली फरमाइश की, और ये भेजा है अमाल बसुमतारी ने सोनितपुर आसाम से। और आपने सॉन्ग फरमाइश की है कशोर फिल्म का दिल मेरा तोड़ दिया, और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों बाइकॉन सोनाली, रूबी, रमेश, अंजलि, हितेंद्र, देवाशीष, रोनू, रूपाली, अस्मिता, सुनीता, जोगिंद्र, लवीनो, लकी और बिमल को। तो अमाल जी आपकी इस खूबसूरत फरमाइश और इतने सारे अपनों के नाम किए गए इस प्यारे डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद, बने रहिए अरुण एफएम पर रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड पर। और दोस्तों, अब बारी है असम से आई एक और प्यारी फरमाइश और दोस्ती भरी डेडिकेशन की। यह मैसेज हमें आया है अस्मिता बासुमतारी और पुंगली बासुमतारी जी की तरफ से, उदालगुड़ी बीटीएस असम से। अस्मिता जी और पुंगली जी, अरुण एफएम पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने इस सॉन्ग को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों अंजुली, लक्की, रूपाली, कल्पना, कविता, निहारिका, कृष्णा, उर्मिला, पूजा, ज्योतिका, कंचन, ज्योतिपाली और प्रेमिका के साथ इस गीत को सुनने का। और आपने गीत फरमाइश की है जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, गीत को फिल्म मुस्कान से। तो अस्मिता और पुंगली जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश और इतने सारे दोस्तों के नाम किए गए इस खूबसूरत डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक

दोस्तों अब बारी है अगले मैसेज की और ये मैसेज हमें आया है हितेंद्र दास जी की तरफ से असम से। हितेंद्र जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है रफू चक्कर फिल्म से किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है गीत को सुनने का। इस गीत को गाया है शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले ने। दोस्तों 70 के दशक के ये मधुर नगमा अपनी प्यारी धुन रोमांटिक अंदाज और शैलेंद्र सिंह जी और आशा जी की खूबसूरत जुगलबंदी के लिए आज भी याद किए जाते हैं। हितेंद्र जी आपकी इस बेहतरीन फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर आपके पसंदीदा सो रेडियो ऑन डिमांड। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है हेलम असम से ज्योति सुरेन जी की तरफ से। ज्योति जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है, चलती का नाम गारी से एक लड़की बीगी बागी सी गीत को सुनने का। ज्योति जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं चलती का नाम गारी से ये कार्यक्रम का अगला गीत को।

दोस्तों बढ़ते हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अगले और अंतिम मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है बिमल बसुमतारी जी की तरफ से, आसाम से। आपने राजा फिल्म का नजारे गीत को सुनने का फरमाइश की है। बिमल बसुमतारी जी, आपके इस प्यारी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आज के हमारे रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अगला और अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी थांगजांग तथा तकनीकी अभियंता PB ड्योरी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण FM 103.1 MHz पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे RJ नीलम जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रमुख व्यापार मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को चुनौतियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेनदेन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि वापस लेने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त तक दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कल नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की बात की। श्री सावंत ने गृहमंत्री से इस मामले में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। डॉक्टर सावंत ने श्री शाह से 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के

0: राजनीतिक आरक्षण को शीघ्रता से लागू करने का अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि अनुच्छेद 370 की शुरुआत ही अस्थायी शब्द से होती है, लेकिन किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने इसे निरस्त करने की इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2019 में सरदार पटेल के संकल्प को दर्शाते हुए आवश्यक कदम उठाया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने के लिए बहुपक्षवाद की आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के 17 देशों से आए स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। सरकार ने सोशल मीडिया के उन दावों का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है और इसमें डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra has said that country's economic growth continues to be supported by resilient demand and it remains world's fastest growing large economy. He said country's economy has performed better than expected in April-June quarter of this fiscal. Presenting monetary policy statement, Mr. Malhotra said, RBI has decided to keep the repo rate unchanged at 5.25%. The RBI governor said West Asia conflict continues to challenge the global economy by disrupting key trade routes. He said RBI has lowered the CPI inflation projection to 5% from earlier estimate of 5.1% for the financial year 2027.
2: Headline inflation has edged up above target as expected. The realized inflation for Q1, however, remained marginally lower than projections, reflecting limited pass-through of cost pressures. The higher inflation is mostly on account of fuel and food, with little signs of generalization of price pressures so far. Core inflation, excluding precious metals, continues to be benign as projected earlier.
1: BJP has described 5th of August as a historic day, marking the 7th anniversary of the abrogation of Article 370. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Gaurav Bhatia said the constitutional provision was revoked, keeping with the spirit of the constitution. He said although Article 370 itself began with the word temporary, no previous government had shown the will to revoke it. He said that Home Minister Amit Shah in the year 2019 took the necessary step that reflected the resolve of Sardar Patel.
3: It's an historic day today because 7 years ago on 5th of August 2019, honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Shri Amit Shah Ji, the Home Minister, displaying the will of Sardar Patel Ji, ensured that the same is done. The leader of opposition, the immature, irresponsible part-time leader, is not letting the parliament function.
1: An Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor-e-Aulia

अभी आपने सुना दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। श्रोता मित्र, आप सभी का इस दूसरी प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज के इस सफर में आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:11 हो रहे हैं। और ये भी बता दें कि इससे पहले हमारी पहली प्रसारण सभा के बेहतरीन सफर पर आपके साथ बने हुए थे आरजे कारगा। आरजे कारगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस दूसरी प्रसारण सभा की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे परिचय के लिए। इस प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ बने हुए हैं प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म लहर का।

फिल्म लहर कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में केदारनाथ फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको आज हम कार्यक्रम के तहत बात करने वाले हैं, जैसे हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें

लिप सिंक या कमर्शियल गाने ना के बराबर हैं, लेकिन माहौल और कहानी को असरदार बनाने के लिए बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रयोग किया गया है। हिंदी फिल्में गानों के बिना अधूरी लगती हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में भी कई बार हॉलीवुड जैसे प्रयोग किए जा चुके हैं, जब डायरेक्टर्स ने बिना गानों के फिल्म बनाने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों में गानों का न होना कल्पना के परे की बात लगती है, लेकिन कई फिल्म मेकर्स ने ये रिस्क लेकर देखा और इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट भी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में। श्रोता मित्रों, इससे पहले हम आपको सुनवाना चाहेंगे जज्बा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे जुबिन नोटियाल की आवाज में जजवा फिल्म का ये खूबसूरत गीत। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि 1969 में आईएस चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म इत्तेफाक में गाने का इस्तेमाल नहीं किया गया। यश चोपड़ा की इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में गाना बांधा ना बन जाए, इसलिए मेकर्स ने इसे बिना गानों के ही रखा। जाने भी दो यारो, ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। ये एक क्लासिक ब्लैक कॉमेडी और पॉलिटिकल सटायर मूवी थी जो काफी चर्चा में रही थी। अगर भारतीय सिनेमा को समझना है तो ये फिल्म एक मस्ट वॉच है। कौन फिल्म? ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सस्पेंसफुल साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसमें मनोज बाजपेयी का काम देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस फिल्म में भी कहीं गाने नहीं रखे गए। हम यहां भूत फिल्म की बात कर रहे हैं जो कि विक्की कौशल की नहीं बल्कि 2003 में आए फिल्म भूत की बात कर रहे हैं। सस्पेंस थ्रिलर होने की वजह से मेकर्स ने इस फिल्म में भी गाने नहीं रखे थे। 2008 में आई फिल्म एवेनस्टे, नशरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की ये फिल्म एक आम आदमी के सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े होने की कहानी थी। ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद की गई कि इसकी कहानी पर हॉलीवुड में एक रिमेक मूवी भी बनी थी। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मित्रों, आप सुन रहे थे फिल्म लहर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आरक्षण, फिल्म से पंडित छन्नूलाल मिश्रा की आवाज में। श्रोता मित्र, कार्यक्रम के तहत आज हमने उन फिल्मों की बात की जिसमें गानों का प्रयोग नहीं हुआ फिर भी हिट साबित हुई। ऐसे और भी कई फिल्में हैं जैसे कि द लंच बॉक्स। तो इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आप सभी को पसंद आए होंगे। श्रोता मित्र, कार्यक्रम फिल्म लहर का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है और आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम।
1: To Western Melodies on Akashwani Itanagar, I'm Coco. Music has an incredible ability to lift our spirits, get us moving, and turn ordinary moments into celebration. This playlist is packed with energetic beats, catchy melodies, and songs that have filled dance floor around the world. Whether you're listening at home, traveling, or simply looking for a burst of energy, these tracks are sure to get you into a great mood. Some songs are made for quiet listening, and then there are songs like this one that instantly make you want to get up and move. Released in 2012, Don't Stop the Party became one of the Pitbull's biggest international dance hits and a regular feature at celebration clubs and even around the world. The song is about enjoying the moment, letting go of stress, and making memories with the people around you. With its energetic beat and feel-good vibe, it's the perfect reminder that sometimes life is meant to be celebrated. Here's Pitbull with Don't Stop the Party.

0: And that was today's playlist. I hope these upbeat tracks brought some extra energy and excitement to your day. Music.
1: श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम। आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचारों को।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
2: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
4: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
2: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

0: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bank to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river banks or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य

0: स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12:14 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। संजय लीला भंसाली के एल्बम सुकून से आइए आनंद लेते हैं बेहतरीन गीतों का। लीजिए प्रस्तुत है पहला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में।

अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप आनंद ले रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे सुकून एल्बम के गीतों का श्रेया घोषाल की आवाज में। अब आपको अगला गीत और कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवा रहे हैं मायरे। जी हाँ, ये अपने जमाने के मशहूर रॉक बैंड यूपोरिया का एक बेहद ही लोकप्रिय गाना है। इसे 1998 में आए उनके दूसरे एल्बम फिर धूम में रिलीज किया गया था। इस गाने के मुख्य गायक और संगीतकार डॉक्टर पलाश सेन है और इसके बोल दीप सहनी और पलाश सेन ने मिलकर लिखे हैं। लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

फिर धूम एल्बम के इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के गाने। तो लीजिए, इसी फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के इस गीत के साथ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि श्रोता मित्रों, आगे आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
1: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर

0: संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: end of this news bulletin.
1: श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को। श्रोता मित्रों, आप सभी सुनने वालों का अरुण FM 103.1 MHz में पुनः स्वागत है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, इस वक्त दिन के 1:11 हो रहे हैं और इसके साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हिंदी क्लासिक म्यूजिक। जी हाँ, सदाबहार गाने जिसके तहत 60 से लेकर 80 के दशक के कुछ चुनिंदे बेहतरीन नगमे हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवा रहे हैं आंखें फिल्म का ये बेहतरीन खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है रवि ने। गीत के बोल कुछ इस तरह हैं, फिर खो ना जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी।

आंसू बन गए फूल फिल्म का एक बेहद ही खूबसूरत और लोकप्रिय गाना। ये एक क्लासिक मेलोडी है जिसे उस दौर के मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। किशोर कुमार और आशा भोसले की जादुई आवाज ने इसे गीत में जान डाल दी। आज भी पुराने संगीत प्रेमियों के बीच ये गाना अपनी मधुरता के लिए बहुत पसंद किया जाता है। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं और UFM 103.1 MHz पर, और आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार गीतों का। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

कोई माने या ना माने, 1971 की फिल्म अधिकार का एक प्रसिद्ध रोमांटिक गाना है। इस गाने को किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। इसका संगीत आर डी बर्मन ने तैयार किया है और इसके बोल रमेश पंत ने लिखे हैं। जी हाँ श्रोता मित्रों, तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में इम्तिहान फिल्म का ये गीत।

जीवन में कभी हिम्मत ना हारने और आगे बढ़ते रहने का संदेश देता ये बेहतरीन गीत, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। जी हाँ, 1974 की फिल्म इम्तिहान का एक

अति प्रसिद्ध प्रेरणादायक गाना है। इसे किशोर कुमार ने गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार गीतों का। और इसी के साथ ही पेश करते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सागर फिल्म से।

सागर फिल्म के इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। श्रोता मित्र, इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से,
1: प्यार भरे अल्फाजों में,
0: दिल से दिल की बात,
1: बस आपके नाम।
0: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर ₹5,00,000 तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
3: जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बताते कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:42 हो रहे हैं। श्रोता मित्र, सदाबहार गीतों के बाद आइए अब आनंद लेते हैं नए जमाने के गीतों का।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे भूल भुलैया 3 फिल्म से इस गीत को तुलसी कुमार और आदित्य की आवाजों में। तो चलिए इसी के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं अगला गीत वॉर टू फिल्म से सचेत टंडन और साज भट्ट की आवाजों में।

रावल ने। और इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार, तथा जी हाँ, पहले आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, फिर दोपहर समाचार, और आपसे हम फिर मिलेंगे।

0: मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा

0: करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: Headline inflation has edged up.
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रही हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के 7 अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। श्रोता मित्रों, आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर पुनः स्वागत है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी।

श्रोतो मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दोपहर के 2:31 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s, 90 के दशक का सुनहरा दौर, जिसका गीत संगीत आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। श्रोता मित्र, 90 के दशक के संगीत से सराबोर होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आगे कुछ समय तक आप आनंद लेने वाले हैं 90 के दशक के कुछ चुनिंदे खूबसूरत गीतों का। श्रोता मित्र, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं रंगीला फिल्म का एक बेहद ही लोकप्रिय गीत, हाय रामा ये क्या हुआ। आपको बता दें कि इस गीत को आवाज दी है हरिहरन और स्वर्ण लता ने, और संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं 90 के दशक के कुछ चुनिंदे बेहतरीन गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे इस गीत को, गुप्त फिल्म का ये बेहद ही लोकप्रिय गीत जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और आपको बता दें कि संगीत दिया है बीजू शाह ने और आनंद बख्शी का ये लिखा गीत। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं अगला गीत सैनिक फिल्म से।

श्रोता मित्र, रंग फिल्म के इस बेहद ही खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे अलका याग्निक कुमार सानू की युगल आवाजों में। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाएंगे दिलवाले फिल्म से। जी हाँ, कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में समीर के लिखे गीत के बोल और नदीम श्रवण की धुन डीजे प्रस्तुत है ये गीत।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे ताए खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सायंकाल के 3:31 हो रहे हैं और इसी के साथ ही प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट।

श्रोता मित्रों, बॉलीवुड अपडेट में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही कई तरह के विवादों से घिर गई है। अब एक्ट्रेस निकिता रावल ने फिल्म में रणवीर के राम बनने पर नाराजगी जाहिर की है और एक्टर से पब्लिकली माफी मांगने को कहा है। नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण सुर्खियों में है। फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तभी से कई सितारों की कास्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रामायण में रणवीर कपूर के भगवान राम बनने पर अब एक्ट्रेस निकिता रावल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। निकिता ने रणवीर के पुराने बयान को लेकर उनसे माफी मांगने को भी कहा है। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान निकिता ने रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में कास्ट करने पर सवाल उठाए हैं। शो में जी हां बातचीत के दौरान निकिता रावल ने रणबीर कपूर से सालों पुराने बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने खुद को बीफ खाने का शौकीन बताया था। निकिता ने कहा कि भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर को ये किरदार निभाने से पहले अपने ऐसे पुराने बयानों पर पब्लिकली सफाई देनी चाहिए। उन्होंने रणबीर कपूर से एक पब्लिक क्लेरिफिकेशन बयान जारी करने की अपील की है। और हाँ दोस्तों, बॉलीवुड दीवा नोरा फतेही की लव लाइफ अक्सर सुर्खियों में रहती है। पिछले कई महीनों से उनका नाम फुटबॉलर यासीन बोनू संग जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नोरा फुटबॉलर यासीन को डेट कर रही हैं। अब एक्ट्रेस ने अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। नोरा ने अपने अफेयर्स की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फुटबॉलर यासीन को अपना अच्छा दोस्त बताया है और कहा वे दुनिया के बेहतरीन गोलकीपर में से एक हैं। बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज की वजह से सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुलिस की कार्रवाई और हालिया विरोध प्रदर्शनों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। नेहा ने इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां कुछ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। तो श्रोता मित्रों, बॉलीवुड अपडेट में आज बस इतना ही। तो चलिए कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं एक फिल्मी गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आप ब्रेक से पहले सुन रहे थे और रोमियो फिल्म का बेहद ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वांगचो श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगा
2: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि ऑगस्ट लेन मनी गा तारीख बुधवार इरुमा केम वांचो साइ का हवांग वांगना हवांग का हो पाई वाले मनचुई यम कमे External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar A. Chavannu ma pangnu motvai jailehen ke rale Global South Chi angke tham echu hayapai tamang le arongang ka motlevan le Dr. Jaishankar A. Hale India to pangnu tingang le Banana de sangke United Nations ka angke permanent representatives tham wang kapai apongosau ke mavan le Social media ma external affairs minister hale apo ke ma technology ti ma khui khap chak le ngo angke tunu no ring angke bo ma development partnership hiya thangsi tui tai ning ke to ata ta to phong ke ning ka ba ma le arong pul ho le NEET UG counseling 2026 han pak ma medical counseling committee e pongwang hotam le ke registration ani ma khang e mok angke boma registration anto le fi ko angka hanpak rahan hanpak ma le august banini ni jamtu arambaji pongkap le dap thamai candidate thame ma e ano se leke nga ngani mukhang e august banram kap le kyak tham chokai Haleke line out no some handbag ma choice locking facility August Banyi Makange Banram Kaple Kapchwakai

0: khosam chu apane haboma laka holom khama horang world championships bronze medalist lakshya sen antole mixed doubles ma dhrup kapila heya tanisha krasto ni chu hakai india ma cha wan ma tu aja angke heya world championship ma haya badminton discipline aga ma thamani pong ma hakai ani ka ho ibai Ija Akashwani
1: अभी आप सुन रहे थे वांगचो श्रोताओं का समाचार. श्रोता मित्र, आपको बता दें कि वांगचो श्रोताओं का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर. तो आप जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए आगे आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीत। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शेफ फिल्म से अरमान मलिक की आवाज में ये बेहतरीन गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे बुलेट राजा फिल्म का ये बेहद ही प्यारा गीत, जिसे आवाज दी है श्रेया घोषाल, बोनी चक्रवर्ती और वाजीत ने। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे ईद उमिस में श्रोताओं का समाचार। फिलहाल सुनते रहे ये प्यारा गीत।

0: आकाशवाणी ईटानगर पुएला पुची हिमंगा लेलेनी एतनिची इदुमिसमी आहोला केजी दरगा लंबो इलिखि हनोचि मे अथोगा चमा जनोगे बने यतन दताची जोचु आजे पंबो अरुण दगादा ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जय शंकर मे हुलु अतिमाचे यूनाइटेड नेशंस मा परमानेंट मेंबर जिया इमोलमरो गो दिल्ली माने चगा महो लगादा आहोगा इंडिया मा मेलो इगा मेंबर नंबर गो मिनिस्टर में टेक्नो अंजी माची आए छे माने अदुंगा छुवे खो नंगा अखावे अचाचा रूमे गे मा आरो तावे एदो ने डेवलपमेंट जोता आरो गो वेला पगे उखो थपुचि पोआचि जगा हि बदा ला होगा नीट यूजी एग्जाम मा प्रा एगने मेडिकल आसो आहितोता बावदा हुया म्या नंबर गे बने एताय ने अबे एचाला पुची जोहलो निमाचे निलीबा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी पाऊ गगाउदा ने गवर्नमेंट में ला होगा राउंड खे माचे सीट है एचाला पुची जोहो सोमाचे ने जोहला हर माचे निलीबा हगाउदा ला होगा ने आ माचे रिजल्ट है अब एचाला पुची जोहो माचे नि आयोगाउदा ला होगा अचाचा रूमी के महो आतिका पुची पुआ एचाला पुची हियो माचे नि ईटानगर ची दैरनाथुम गवर्नमेंट कॉलेज तो ने इकिसा कैप्टन आतिका एम एम मोकड्रिल अखगा ने कैप्टन दिशी टोको बाबू में ला होगा ने आदि अरुमा सैरन पे पापा ईटानगर कैप्टन आतिका ची इमो में अम्बतो यू बाजी मने होलोमा मिले के बने ओकोमा अम्बतो बा लाइट अम्बुजी ना लगादा होगा अम्बतो यू बाजी मने खिनी बाजी मालीबा मोकड्रिल अखागे ने आदि सैरन पेगा महो कैप्टला तिका चे मुँह में रियासी तो जिम ना ने दिशि में लाओगा होगा अरुणाचल प्रदेश मचे आई ओ नंबर में अरुणाचल प्रदेश के बा जेम ऑफ इंडिया चैलेंज मा एमा बेजी ना ने माई भारत तो ने यूनियन इंफॉर्मेशन तो ने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मच में लगा ने मैं नंबर में नौशा माने एन ए तिका चे कल्चर एचु टूरिज्म करुची दे दो ने एक आई तो जी गए एक लाके गए ने जेम ऑफ इंडिया चैलेंज मा एम बीजी ना लगादा आहोगा एक इमुमा आजो आहे मुमा चेमु मैं ऑर्गनाइजेशनल नंबरो एन एस एस वॉलेंटियर नंबरो माई भारत मेम्बर नंबरो करु आतुया एन जी ओ दो ने एक इमो नंबर में आमा एम एम बेजी गाउदा ला होगा तवां दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज मा आजो आहितया मैम एलामया के बने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मामा इंटर्नशिप जॉबा दिसी नामगेल आंगमो में लाने का माने कॉलेज में इनोवेशन चैलेंज प्रपोजल आजो चिपवा प्रेजेंटेशन एक गादा आहोगा आजो आहितया मैं जॉका आयो में अलाउ चिपुआ जेन दे विदा ने देशी में नौगा ने आ प्रेजेंटेशन माने ईपु ईम्पु लाके इन दो चिपुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अतु सुगाओ दा लाए बदा आओगा कई पन्योर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश कोसाप हारो माचे मेंबर ताहर में बुनी कई पन्योर डिस्ट्रिक्ट माचे देशी अंकिता मिश्रा गो चौगा बने अहम बया माचिमपुरुगे में निको कॉलोनीमा नाही आटो आटा दो ने इमु एहायाबमा आरोने नलाने इयुला पावरे चेक आजपा हातेगा बदा आहोगा दिसी में याचोले तिकोची डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीएट माने आ चेक पाऊ गागाने प्रभु हांगा बदा आ पाऊ है मुई एमतागा जिमी प्रा मा एठोगा जिगा लाने वदा लगा अरवा गदा ला होगा अब चला पुचे जिहोलो माचिनी ने जानो एसो माचिनी लिपा मदेली माचे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम माने बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप अखगाय बोमा अहा चैंपियन सागबा पी वी सिंधु सत्विक सहराज रन के रेड्डी चिराग सेठी लक्ष्य सेन ध्रुव कपिला दोने तानिशा क्रास्टो में एम बेगा बौदा ला होगा एतानिची इदुमिस्मी आहो अनिमाओ दोबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर दिबुगढ़ नाले id mismi programa echanta ashe ahonso khyama ho etani hendo ani talingi ji chashi chi ahji
1: जी हाँ श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे ईद उमिस में श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि ईद उमिस में श्रोताओं के पूरे कार्यक्रम को सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए आगे आपको सुनवा रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी गाने।

अरुण एफ एम 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्में गीतों का कार्यक्रम। जी हाँ श्रोता मित्र, इस गीत को आप सुन रहे थे हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजों में बैंग बैंग फिल्म से। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, इस गीत को आप सुन रहे थे क्रिस 3 फिल्म से अलीशा, चिन्ने और जुबिन गार्ग की आवाजों में। इस गीत के साथ अब समय हो चला है मेरे आपसे बिछड़ने का और साथ ही इस दूसरे प्रसारण सभा के सफर की समाप्ति का। जाने से पहले बता दें कि सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह, साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। श्रोता मित्र, अरुण FM 103.1 MHz पर मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जी हां, हमारी तीसरे प्रसारण सभा के साथ आपसे जुड़ने वाले हैं आपके चहेते आरजे दागमे नानस। स्टूडियो में आपका स्वागत है। श्रोता मित्र, आपको ये भी बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो अब अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स माई भारत नई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम करुमराव स्टेट वंग यूथ हेंगनाओ जेम ऑफ इंडिया चैलेंज अरुणाचल प्रदेश पर डिजिटल स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव लामरनांग पार्टिसिपेट कजांग मरुत अर ऊपर जो पार्टिसिपेट कजांग मरावर वनर ऑफिशियल माय भारत इवेंट पेज नंग रजिस्टर कुरी रक्षी अर पर इवेंट तकयांगसी डिटेल पर राय रक्षी मोरु समर वेकेशन बोन बंग बली बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ताम जाम जलिंगसी इंटर्नशिप काम सोम तहै ताबांग वंग दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज वंग लिबंद्र मनै पन इनोवेशन चैलेंज प्रपोजल पर नुंग तंगोरु गवर्नेंस नई पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर अमाइ तकयांग मो ताबांग वंग डीसी नामग्याल आंगमोर लिवन म पर प्लेटफॉर्म पर कुतमो रोक मई कथुंग तनांग डीसी र मसो फानरो लिवन ऑब्जर्वेशन नई इनोवेटिव थिंकिंग रबु प सलंका थ अरो गवर्नेंस नंग यूथ हेंग पार्टिसिपेशन प अरियंग ताइरंगो फानरो पर वंग बेस्ट इनोवेशन प्रपोजल पर डिपार्टमेंट ताम्र सहे म लामछिंगो फान थ पर जो वसडो बंगा प्रेजेंटेशन पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन र रायमाई सिंगोरो डीसी र काखाम कुतंगो रोक थ अने खामपंग लेम तनांग इफेक्टेड तंका पर ततोंग बाय म कॉन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश कोसेप केई पानियो डिस्ट्रिक्ट यूनिट र करोक मेंबर डेलीगेशन र मनै याचुली वंग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बिल्डिंग नंग डिस्ट्रिक्ट वंग डीसी अंकिता मिश्रा म लाक मचेत गन चेक प कुतमो रु त केई पान्यो डिस्ट्रिक्ट वंग पोसा निपको कॉलोनी नई परकोरे एरिया नंग खामपंग र तथेन जान बात नंग चमचाउ रबन महिंग म होहाई म गवर्नमेंट इम्प्लॉय हेंग नई बलांग कुमराउ रबन र करुमरो पर डोनेशन गन प कुतमो रु त अरे ऊपर काम कई पानी डिस्ट्रिक्ट वांग डीसी र कॉसेप्ट इनिशिएटिव लामत पर श्रीलंका रो पर लाख मचे रिलीफ फंड पर खामपंग तवांग फ्लॉट इफेक्टेड तंकाबन होहाय म अहु म ट्रांसपेरेंट लाम म कुशी मोरो का खाम कुत मोरो त अरे न्यू दिल्ली नंग इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नंग मचो अगस्त सेलिंग रांसा तारीख म रंखोरोम तारीख तक BWF World Badminton Championship 2026 तयांग सिनांग वोमेन सिंगल इवेंट नंग अफांगवांग चैंपियन पीवी सिंधु पर नाइन सीट नंग यांग सिंगो रो त परजु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप नंग इंडिया वांग हाईएस्ट सीडेड एंट्री पर मेंस डबल पेयर नंग सर्विक सिराज नई चिराग सेती पर फिफ्थ सीट नंग मो रो त परम अफांगवांग वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्ष्य सेन पर मेन सिंगल नंग 14 नंग जांगसी परम ध्रुव कपिला नई ओलंपियन तनिस्का क्रेस्टो पर मिक्स डबल नंग 15 सीट नंग रुक्त रुंगरंग इतान नंग थुम्र
1: Thank you.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों इससे पहले आपके साथ यानी हमारे दूसरी प्रसारण सभा में बनी हुई थी आप सबके साथ आप सभी के चहीते आरजे नीलम थापा और अब उसने छोड़ दिया है स्टूडियो का कारोबार मेरे हाथ में, तो अब से कुछ पलों के लिए मैं ही रहूंगा आपका हम सफर यानी आपका होस्ट आपका दोस्त आरजे ननास। और दोस्तों हमारे इस तीसरे प्रसारण सभा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गिर एते और इंजीनियर डीटी यानी तकनीकी अभियंता है ताना आतु। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये तीसरा प्रसारण सभा।

0: तो सो तो दोस्तों, आज की इस तीसरी प्रसारण सभा में सबसे पहला कार्यक्रम आप सुनेंगे गुड इवनिंग ईटानगर।
1: इवनिंग ईटानगर।

गुड इवनिंग ईटानगर 103.1 मेगाहर्ट्ज पे आप सबका दोस्त आपका होस्ट आरजे नरास आप सबको करता है स्वागत हमारा कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब आप भी ट्रैफिक में फंसे हो या शाम को घर लौट रहे हो, आपके हाथ में पॉकेट में जाकर फोन आपका हाथ पॉकेट में जाकर फोन ढूंढता है या नहीं? दोस्तों पता है, मैं अभी अभी स्टूडियो की विंडो से बाहर देख रहा था, आसमान में इतनी प्यारी ऑरेंज सनसेट है, ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन सिग्नल पर रुकी गाड़ियों में आधे से ज्यादा लोग नीचे मुंह करके इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। दोस्तों आउटडोर व्यू HD से भी बेहतर है, पर हमें स्क्रीन की 6 इंच की दुनिया से फुर्सत ही नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं इसी डिजिटल डिटॉक्स पर, क्योंकि हमारे हाथ से फोन नहीं छूटता। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। पहले एक मस्त ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद करेंगे थोड़ी सी और भी बातें, तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, क्या आपने कभी फील किया है कि पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ पर जब आपने निकाल के देखा वहां कोई नोटिफिकेशन नहीं था? दोस्तों, इस बीमारी को साइंस में कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, मतलब हमारा दिमाग इतना एडिक्ट हो चुका है कि उसे बिना बजने पर भी लगता है कि फोन बज रहा है। और सोचो, पहले के टाइम पर शाम होते ही लोग दोस्त के साथ घूमने जाते थे, बातें होती थी। आजकल चार दोस्त बैठते हैं पर चारों के हाथ में फोन होता है और ग्रुप चैट में एक दूसरे को मीम्स भेज रहे होते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि फोन फेंक दो या एक इंटरनेट बुरी चीज है। दोस्तों, आजकल न्यूज, वेदर अपडेट सब इसी पर मिलता है। पर दोस्तों, शाम की ये 2 घंटे जब नेचर इतना सुंदर होता है, क्या हम 15 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ नहीं कर सकते? सोचिए दोस्तों, सोचने वाली बात है। इसी को ही कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। ट्राई करिए दोस्तों, हमेशा हर दिन अपने आप को स्क्रीन से कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए अलग, बिना स्क्रीन देखे बस दुनिया की खूबसूरती का महसूस कर लिया। और दोस्तों, जब इसकी आदत लग जाए आप सभी को, आई प्रॉमिस कि आप सबको बहुत बहुत ज्यादा पीस और काफी रिलैक्स फील होगा। तो चलिए दोस्तों, बातें और भी होती रहेंगी पर आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत इस कार्यक्रम में।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव। अरुणाचल प्रदेश सेवा संघ परिसंघ कौसाब की कईपानी और जिला इकाई द्वारा कईपानी और उपायुक्त अंकिता मिश्रा को जिले में हाल ही में आए आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित परिवारों की राहत एवं पुनर्वास के लिए 8 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। जिला प्रशासन ईटानगर कैपिटल रीजन द्वारा आगामी 8 अगस्त को शाम 8 से 9 बजे तक तेरा नाटों गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में शहरी व्यापी आपातकालीन तैयारी अभ्यास के साथ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का करेगा आयोजन। अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा मामले विभाग ने माय भारत तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से राज्य के युवाओं से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज अरुणाचल प्रदेश में भाग लेने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश के साजी नातोंग ने हिमाचल प्रदेश स्थित माउंट यूनाम में की चोटी पर वैक्लिप करने वाले पहले भारतीय बनकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2026 में अपना नाम दर्ज किया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विभिन्न मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की महिला एकल स्पर्धा में 9वीं वरीयता दी गई है। चैंपियनशिप में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त खिलाड़ी पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता मिली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉ. मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा है कि डॉ. मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचों का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई है और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
2: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अरुणाचल प्रदेश सेवा संघ परिसंघ कौसाब की कईपानी और जिला इकाई के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा याचुली स्थित जिला सचिवालय भवन में कईपानी और उपायुक्त अंकिता मिश्रा को जिले में हाल ही में आए आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित परिवारों की राहत एवं पुनर्वास के लिए 8 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। यह राशि सरकारी कर्मचारियों और शुभचिंतकों के सहयोग से एकत्रित की गई है, जिसका उद्देश्य

0: कई पान्योर जिले के पौसा, निपको कॉलोनी तथा आसपास के क्षेत्रों में आए विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। चेक प्राप्त करते हुए उपायुक्त ने कौसाब की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 लाख रुपए की राहत राशि का उपयोग पारदर्शी और विवेकपूर्ण ढंग से बाढ़ प्रभावित परिवारों के कल्याण, राहत एवं पुनर्वास के लिए किया जाएगा। जिला प्रशासन ईटानगर कैपिटल रीजन अरुणाचल प्रदेश द्वारा आगामी 8 अगस्त शनिवार को शाम 8 से 9 बजे तक देरनाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में शहरव्यापी आपातकालीन तैयारी अभ्यास के साथ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रहा है, जिसके तहत शाम ठीक 8 बजे से एयर रेड सायरन बजाया जाएगा। उसके बाद 15 मिनट यानी 8:15 तक ईटानगर कैपिटल रीजन में ब्लैकआउट रहेगा। नागरिकों से सभी लाइट्स बंद रखने, घरों के भीतर रहने, न घबराने तथा जिला प्रशासन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों के साथ संपूर्ण सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। अभ्यास के दौरान यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया संबंधी गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। आम जनता से पुलिस, सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों तथा मॉक ड्रिल के तैनात अन्य अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा मामले विभाग ने माय भारत तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से राज्य के युवाओं में जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज अरुणाचल प्रदेश में भाग लेने का आह्वान किया गया है। यह एक अनूठी डिजिटल स्टोरी टेलिंग पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध विरासत, संस्कृति, परम्पराओं, पर्यटन तथा प्रेरणादायक स्थानीय कहानियों का उत्सव मनाना है। विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, एनएसएस स्वयंसेवकों, माय भारत के सदस्यों, स्टार्टअप्स, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय समुदाय से सक्रिय भागीदारी करने का और युवाओं को अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया गया है। इच्छुक प्रतिभागी माय भारत के आधिकारिक इवेंट पेज पर पंजीकरण कर कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के साजी नातुंग ने हिमाचल प्रदेश स्थित 6,111 मीटर ऊंचे माउंट यूनाम में चोटी पर बैकलिफ्ट करने वाले पहले भारतीय बनकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 में अपना नाम दर्ज कराया है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री चौहान मेन ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा है कि साजी नातुंग का यह उल्लेखनीय कारनामा असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और रोमांचकारी भावना का प्रतीक है, जो अरुणाचल प्रदेश तथा पूरे देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का आग्रह किया गया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है तथा अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से अब तक राज्य के 10 जिले प्रभावित हुए हैं, जिनमें शिवसागर, धेमाजी, कोलाघाट, सरायदेव और कामरूप महानगर शामिल है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 2 और लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे राज्य में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए ऊपरी असम के 5 दिवसीय दौरे पर गए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने कल शिवसागर के एक राहत शिविर का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया और जल प्रलय से प्रभावित शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति की समीक्षा की। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ में जान गंवाने वाले 10 लोगों के परिजनों को वित्तीय सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों ईस्ट कमिंग, पापुमपारे, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिवांग वैली, लोहित, नामसाई और चांगलांग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की महिला एकल स्पर्धा में नौवीं वरीयता दी गई है। ये प्रतियोगिता 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी

0: Ravi Sardar, carrying a reward of 5 lakh rupees, and women Maoist Meena, who carried a reward of 2 lakh rupees. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं नॉक्टे श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: अब आकाशवाणी ईटानगर जिबिगर वानुक्ति प्रोग्राम अथुरंगजा था वनबंगा सानपो तंगरे नंगनुक्ति खुपुच तत्कत थजापुट पाचा 5 तारीख अगस्त चंग खुपुच को दीपा किम किम तेसिया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जे शंकर मंगे का अहेतु टाइम को रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म अहान कंट्री तुंगनंग कॉपरेट दिको डिसीजन मेकिंग सिस्टम पा जोमिन बेटर दिको फेयर बोनारंग यारंग जरूरी ताकि ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज है एस्पिरेशन दिको इंटरेस्ट पमित सही रिप्रेजेंटेटिव चोरंगा मंगाई को ग्लोबल ऑर्डर पंजा रंग तेजी में बदली का। डॉक्टर एस जयशंकर मा यूनाइटेड नेशन वा चीवानगित कंट्रीज पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव तम नंग इंटरेक्ट हो नंग वा अर अपंग रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया नंग वन थे स्टडी टू रंग हुई रा। सोशल मीडिया पोस्ट को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मंगई का और डिसीजंस को टेक्नोलॉजी मेरीटाइम सेफ्टी पीस कीपिंग डेवलपमेंट पार्टनरशिप दिखो डिजिटल रिस्पॉन्ड और रंग रंग टॉपिक को नंग डिस्कशन होने का। मेडिकल काउंसलिंग कमिटी एमसीसी मा तजा नीड यूजी काउंसलिंग 2026 राउंड वन रजिस्ट्रेशन पा शुरू होने का। ऑफिशियल शेड्यूल जून राउंड वन रजिस्ट्रेशन निया फी पेमेंट लास्ट डेट पा अगस्त 12 तारीख तो छा दी 3 बजे तो कदम में कैंडिडेट है अगस्त इरोक पमा अगस्त ची वारम तारीख तुंग को मर मेडिकल कॉलेज तंग प्रिफर हुन का अर प्रिफरेंस पर ताबोरिया अर दी को चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी फाइनल चॉइस पा कन्फर्म हुन पा अगस्त ची वानी निया अगस्त ची वारम तारीख तुंग को अवेलेबल दंग में अरे तुमको राउंड वन सीट अलॉटमेंट प्रोसेस पा अगस्त ची वन रोम पम्बा अगस्त ची वन रोक तारीख तुमको दंग में अरे दी को राउंड वन रिजल्ट पा अगस्त ची वन ये तारीख को डिक्लेयर वन में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ICR मा हु राहु निबाचा को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्ट वन में रंगपन 8 बजे पमा 9 बजे तो कोआ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर नंगा अर दम को ईटानगर सिटी नंग इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज इमरजेंसी सिचुएशंस रंग प्रैक्टिस मिनहन मिन मॉक ड्रिल पार्ट को रंगपन 8 बजे एयर रेड साइरन बोजामिन अर दी को रंगपन 8:15 तो को पूरा ईटानगर कैपिटल रीजन ICR नंग 15 मिनट्स रंग ब्लैक आउट नंग मिन 15 मिनट्स रंग पूरा लाइट है बोन दंग मिन तंगुका नंग रिक्वेस्ट वन का लाइट है स्विच ऑफ थे रंग पेनिक लदंग रंग दिको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स एजेंसी हे तमनंग कोऑपरेट हो नंग रंगेगा आर एक्सरसाइज पुट को ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन दिको इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिविटी हे मिंदंग में पब्लिक हे नंग एडवाइस होन का पुलिस सिविल डिफेंस वॉलंटियर दिको आर ड्रिल रंग डिप्लॉय ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन पर फॉलो हो रंगेगा। Department of Youth Affairs Government of Arunachal Pradesh, My Bharat and Ministry of Information and Broadcasting, Government of India Collaboration Ma, State Wa Youth Herang, Gem of India Challenge Arunachal Pradesh Ko, Participate Hon Rang Appeal Hon Ka. Arapavante Unique Digital Storytelling Initiative. Are aim pa Arunachal Pradesh rich heritage, culture, traditions, tourism, tiko, inspiring local stories he celebrate la, promote Hon Rang Hon Ka. Department ma educational institutions, youth organization, NSS volunteers, My Bharat members, startups, tourism stakeholders, NGO diko local communities hinang appeal huan ka. Ara initiative ko actively participate kap rang diko youth hinang motivate huan rang huan ka. Interested participants he official My Bharat event page ko kalame register ta huana. अरे इवन रिलेटेड कंप्लीट डिटेल पमिन अर पेज को जो इच्छो है दोर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज थावांगवा स्टूडेंट्स हे ममजा हने इनोवेशन चैलेंज प्रपोजल प्रेजेंट होन का हने मा समर वेकेशन पुट को जंग थे इंटर्नशिप को आहन आहन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हे नंग सक्सेसफुली होन गी को प्रपोजल पा प्रेजेंट होन का a representation program.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

वेरी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग टू ऑल माई लवली लिसनर्स. ये है आपका अपना दोस्त आरजे ननास और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव सिर्फ और सिर्फ आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात. दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़, ट्रैफिक का होंकिंग और बॉस का गुस्सा, इन सबको दो मिनट के लिए साइड में रख दो, क्योंकि अब घड़ी की गाड़ी की स्टेयरिंग पे आपका हाथ है और म्यूजिक के रिमोट में मेरा. तो सबसे पहले आज की शाम को थोड़ा और हसीन बनाते हैं इस खूबसूरत शायरी के साथ. दोस्तों, वो कहते हैं ना, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी भीड़ में है, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो. जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसी खूबसूरत शाम को और भी मजेदार बनाते हैं अगले एक कुछ पलों तक. ट्रैफिक चाहे कितनी भी लंबी हो, आपका ये सफर बोर नहीं होने दूंगा. लाइनअप में है आज के सबसे फ्रेश चार्टबस्टर्स और कुछ पुरानी यादें. तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपनी कार का स्टीरियो का, सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, यानी आपका दोस्त आपके होस्ट आरजे ननास के साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे.

और दोस्तों इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। लेकिन दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फिर से हमारा संगीत में चालू रहेगा कार्यक्रम शाम की महफिल के साथ। तो सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे।

0: चलो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे हमारे ये संगीत में सफर में एक बार फिर से। तो सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp.

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम शाम की महफिल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब आप सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: अपने यहाँ का बॉस।
1: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
0: अब क्या करें?
1: जो भी करेंगे एक साथ करेंगे।

श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुणा FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे आदि श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, ऐसी कई कहानियां होती है जो फिल्मों में दिखाई जाती है, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो खुद एक फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा लड़का जो चांदनी चौक की गलियों में बड़ा हुआ, बैंकों के एक रेस्टोरेंट में सेफ और वेटर का काम करता था, जिसके पास ना कोई तो गॉडफादर था ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड, लेकिन अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन और अपने दम पर उसने बॉलीवुड पर राज किया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हमारे अपने खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार के शानदार सफर के बारे में।

दोस्तों बात शुरू होती है 1967 से, जब राजीव हरि ओम भाटिया का जन्म होता है। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स का शौक था। पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था तो उनके पिताजी ने उन्हें बैंकॉक भेज दिया मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए। वहां अपना खर्चा चलाने के लिए राजीव ने एक वेटर और सेप का रूप में काम किया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वापस मुंबई आकर जब उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया तो उनके एक स्टूडेंट ने, जो कि एक मॉडल कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मॉडलिंग करने की सलाह दी उसे। और बस दो दिन के मॉडलिंग सूट में उन्होंने इतने पैसे कमाए जितने उनके महीने की सैलरी थी। यहां से शुरू हुई

साल 1991 राजीव भाटिया बन गए अक्षय कुमार और उन्होंने अपनी पहली लीड फिल्म सौगन से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म एवरेज रही पर असली धमाका हुआ 1992 में जब अब्बास मुस्तान की थ्रिलर फिल्म आई खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद तो जैसे खिलाड़ी टाइटल उनके नाम के साथ जुड़ ही गया। मैं खिलाड़ी तू नारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, एक के बाद एक एक्शन फिल्म्स आई और अक्षय कुमार बॉलीवुड के अल्टीमेट एक्शन हीरो बन गए, जिन्हें लोग इंडियन जैकी चैन भी कहने लगे क्योंकि अपने सारे स्टंट्स वो खुद करते थे। तो चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं अक्षय कुमार की फिल्म यानी मैं अनारी तू अनारी फिल्म का ये बेहतरीन गाना, और हम बातें करेंगे और भी और सुनाएंगे आपको अक्षय कुमार की जर्नी के बारे में। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। लेकिन इससे पहले लीजिए, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग

नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, हर चैंपियन की जिंदगी में एक पेज आता है जब ग्राफ थोड़ा नीचे जाता है। वैसे ही 90s के आखिर में अक्षय की कई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, पर कहते हैं ना, असली खिलाड़ी वही है जो हार न माने। साल 2000 आया और उसके साथ आई परदेश प्रिया दर्शन की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। राजू का वो किरदार, वो कॉमिक टाइमिंग, भाई साहब मजा आ गया। एक्शन के बाद अब अक्षय कुमार ने कॉमेडी की दुनिया में भी तहलका मचाना शुरू कर दिया। गरम मसाला, भागम भाग, वेलकम, सिंह इज किंग, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स कॉमेडी ने उन्हें देश का सबसे चहीता स्टार बना दिया।

लेकिन दोस्तों सफर यहां भी नहीं रुका, जब बाकी एक्टर्स के जेनरा में बन जाते थे, अक्षय ने एक नया ट्रेंड शुरू किया, सोशल और कंटेंट ड्राइवन सिनेमा का। एयरलिफ्ट, बेबी, स्पेशल 26, पैडमैन और ट्वाइलाइट, एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों से उन्हें न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 100-200 करोड़ के रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि समाज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया, और इसीलिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों उनकी सक्सेस का राज क्या है? कोई मैजिक? सिर्फ उनका अल्ट्रा डिसिप्लिन लाइफ। सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना, फिटनेस के डेडिकेशन होना, साल में 4 से 5 फिल्में टाइम पर डिलीवर करना और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी। वो आज भी यूथ के लिए एक लाइव एग्जांपल है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो चांदनी चौक की गलियों से निकलकर भी दुनिया के टॉप एक्टर्स के लिस्ट में जगह बनाई जा सकती है। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत उन्हीं की फिल्म का, और ये फिल्म है अंदाज, जो बनी थी 2003 को। लीजिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। मैं लौट कर आता हूँ, सुनते रहिए अरुणा FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

तो दोस्तों ये थी आज के कलाकार अक्षय कुमार की इंस्पायरिंग कहानी, एक आम इंसान से खिलाड़ी और फिर सुपरस्टार बनने का सफर। चलिए इसी बात पर आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और बेहद शानदार और सोरफुल गाना जो आपके इस इवनिंग ड्राइव को और भी सुहाना बना देगा। आप बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे नराश।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज के कलाकार आकाश वाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे निशी सोथाओं का समाचार।

아부타니게 꿈에 아뚜냐 냐그 꿈에 하리 하링 하궁 오게 하잉

तो श्रोता दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम निसी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन प्रोग्राम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां पहुंचते ही बिना किसी वजह के आपका मन अपने आप शांत हो जाए, जहां हवा भी कुछ अलग सी महसूस हो, घंटियों की आवाज सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक उतर जाए, और डूबते सूरज की गोल्डन रेज किसी मंदिर की छत पर इस तरह बिखर जाए जैसे आसमान ने अपनी सारी रोशनी वहीं उतार दी हो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। मैं हूं इस सफर में आपका ट्रैवल बडी। आज हम निकल पड़े हैं अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले की ऐसी डेस्टिनेशन पर जहां नेचर की सिंप्लिसिटी, फेथ की डेप्थ और कल्चर की ब्यूटी तीनों एक साथ देखने को मिलती है। तो आज हमारी डेस्टिनेशन है गोल्डन पगोडा, जिसे ताई खामती लैंग्वेज में कोंगमुखाम कहा जाता है। ताई खामती भाषा में कोंगमु का मतलब है पगोडा यानी बुद्धिस्ट टेंपल, और खाम का मतलब है गोल्ड, कोंगमुखाम मतलब गोल्डन पगोडा। कोंगमुखाम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। तो चलिए आज का सफरनामा शुरू करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। जब भी आप अरुणाचल प्रदेश का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद स्नो कवर्ड माउंटेन्स, घने जंगल और घुमावदार सड़कें। लेकिन नामसाय इससे थोड़ा अलग है। यहाँ दूर दूर तक फैले पैडी फील्ड्स, हरे भरे टी गार्डन्स, ओपन ब्लू स्काई और शानदार रोड्स इस पूरे सफर को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है और अचानक दूर होराइजन पर धूप में चमकती हुई एक गोल्डन इमारत दिखाई देती है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने हरे कैनवस पर सोने का रंग भर दिया हो। यही है कोंगमू खाम यानी गोल्डन पगोडा। जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटने लगता है। मेन गेट से अंदर कदम रखते ही आपका स्वागत कोई इंसान नहीं बल्कि गहरी शांति करती है। हवा में खुली घंटियों की मधुर आवाज, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती प्रेयर्स।
1: नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस
0: मिलकर ऐसा माहौल बनाती हैं जहां मन अपने आप रिलैक्स होने लगता है। तभी महसूस होता है कि कुछ जर्नीज सिर्फ फोटोज लेने के लिए नहीं होती बल्कि अपने आप से मिलने के लिए भी होता है।
2: इतनी सी

0: या आपका आलूबारी जो ब्रह्मपुत्र ब्रिज है वो हो गया। नेक्स्ट में अगर घूरने चाहते हैं तो आपका दीवान एक हो गया, दीवान जो आपका वाकरो जो आपका पसराम कुंड है
1: जी जी,
0: उससे इधर से जाना पड़ता है, वो भी एक घूरने का बहुत अच्छा
1: जी जी जी।
2: हम आपका आसाम से आए हैं।
3: आसाम से और इससे पहले भी आप विजिट किया था
2: जी? दो हो गया, दो तीन बार हो, ये
3: लगे
2: तीन बार हो रहे
3: ऐसे ना।
2: खास चीजें नहीं, और घूमने के लिए आपको अच्छा जगह मिल जाता है ना, बहुत दिन दिन के बाद आता है, अभी लगभग दो साल के बाद ही आ रहा है। फीलिंग आपका क्या बोलेगा, और वो मौसम देख के होता है भाई आप
3: ऐसे ना,
2: कभी के बाद गर्म में गर्म का मजा, ठंडा में ठंडा का मजा। जी वो एक दोस्त है
3: जी।
2: दोस्त वो आगे में है, उसके दीदी के साथ आया, वो बोला था, उसके बाद लगातार आ रहा है अभी।
4: जी हाँ, यही तो किसी भी ट्रिप की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, जब हम किसी जगह को सिर्फ देखते नहीं बल्कि फील भी करते हैं। कोंग मुखाम सिर्फ एक खूबसूरत बुद्धिस्ट टेंपल नहीं है, ये ताइखामती कम्युनिटी की कल्चरल आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा भी है। ताइखामती कम्युनिटी थेरावाडा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, ड्रेसेस और लाइफस्टाइल साउथ ईस्ट एशिया, खास तौर पर म्यांमार और थाईलैंड की बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से काफी जुड़ी हुई है। साल 2010 में बना ये पगोडा आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में गिना जाता है, या तो कहें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, देश विदेश में भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसकी आर्किटेक्चर वाकई देखने लायक है, गोल्डन शिखर, मल्टी लेयर्ड रूफ, ब्यूटीफुल कार्विंग्स और शांत मुद्रा में विराजमान लॉर्ड बुद्ध की विशाल स्टैचू हर विजिटर्स को कुछ देर रुकने पर मजबूर कर देती है। पूरा कैंपस बेहद साफ सुथरा है, चारों ओर ग्रीन गार्डन्स, छोटे छोटे स्तूपास, मेडिटेशन कॉर्नर्स या सेंटर्स और कलरफुल फ्लावर्स इस जगह की ब्यूटी को और भी बढ़ा देते हैं। अगर आप यहाँ सुबह पहुँचे तो सूरज की पहली किरणें पूरे पगोडा को गोल्डन ग्लो से भर देती है, और शाम को डूबता हुआ सूरज इसे बिल्कुल अलग रंग से रंग देता है। यही वजह है कि दिन का हर समय और हर सीजन इस जगह को एक नया लुक

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। अगर आपकी ट्रिप अप्रैल महीने में हो तो आपको ताइक हमती कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल सांकेन देखने का मौका जरूर मिलेगा। सांकेन ताइक हमती कम्युनिटी का न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। इस दौरान वे लॉर्ड बुद्ध के स्टैचू पर पवित्र जल अर्पित करते हैं और एक दूसरे पर पानी डालते हैं। हम कह सकते हैं कि खामती होली सांग

बट होली की तरह वे रंग यूज नहीं करते बल्कि पानी एक दूसरे पर डालते हैं, एक दूसरे को न्यू ईयर विशेस देते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, ढोल, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स और फोक डांस पूरे माहौल को फेस्टिवल वाइब से भर देते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर एक अलग से खुशी दिखाई देती है। ये सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बल्कि अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को नई जेनरेशन तक पहुंचाने का एक खूबसूरत जरिया भी है। अगर आप इस समय यहाँ आए तो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक पूरी लिविंग कल्चर को बहुत ही करीब से देखने और महसूस करने का मौका मिलता है।

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। अब सुनते हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट के एक लोकल रेसिडेंट की बात। तो आइए सुनते हैं वे गोंगमुखाम के बारे में क्या बताते हैं और हमें क्या जानकारी देते हैं।
1: मेरा नाम डॉक्टर चावानंदा चिरिंग है और मैं नामसाई का रहने वाला हूँ। गोंगमुखाम का अगर हम लोग हमारे कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है हमारे कम्युनिटी में, क्योंकि एक तो ये हम लोगों का कल्चर का एक सेंटर के तौर पे अगर बोला जाए तो भी गलत नहीं है। और आज के दिन पे जो हम लोगों का यूथ है, अपना जो लोकल स्क्रिप्ट या डायलेक्ट वो सब लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो गोंगमुखाम में वो सब चीजों को भी हम लोगों का सिखाया जाता है। तो काफी कल्चरल प्रिजर्वेशन के तौर पे अगर देखा जाए अभी के टेस्ट में, तो ये सब चीजों में भी काफी एक बहुत मतलब अच्छा रोल प्ले करता है। हम टूरिज्म पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये एक टूरिस्ट लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट है हम लोगों का गोंगमुखाम। उसके अलावा अगर मैं यहाँ के लोकल रेसिडेंट होने के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे पहले इस तरीके का कुछ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं हुआ करता था, क्योंकि टूरिस्ट इनफ्लो इतना नहीं था यहाँ पे। तो अभी के टाइम पे काफी बाहर से भी टूरिस्ट लोग आते हैं, घूम जगह को देखते हैं। एक तो ये हो रहा है कि यहाँ का हम लोगों का जो कल्चर है उसके बारे में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ का जो भी रीति रिवाज है, यहाँ में लोग हम लोगों का कम्युनिटी लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। दूसरा, जो भी लोकल रेसिडेंट्स है हम लोगों को भी यहाँ पे भी थोड़ा सा इनकम का एक सोर्स मिल जाता है जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं उससे, कि जिस तरीके से छोटे छोटे हट्स लगा के या रिजोर्ट वगैरह किसी भी तरीके का जो भी चीजों को या लोकल जो भी सामान ऑर्गेनिक सामान है वो सबको भी सेल करके भी उन लोगों को भी कहीं ना कहीं एक इनकम जनरेशन का सोर्स भी मिल जाता है। फंकेन का अगर देखें तो हम लोगों का एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो आजकल क्या हो रहा है कि फंकेन को इंटरनेशनल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को पता है कि फंकेन किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं। तो उन लोगों का भी रहता है कि एक एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो जब उन लोग फंकेन पे आते हैं, खुद उन लोग फंकेन को फील करते हैं, फंकेन में उन लोग इन्वॉल्व होते हैं फंकेन फेस्टिवल पे, तो उनका ये रहता है कि उन लोग यहाँ के कल्चर को समझ रहे हैं और यहाँ के लोगों के साथ में वो लोग घुल मिल रहे हैं फेस्टिवल के टाइम पे। तो वो एक एक्सपीरियंस ही उन लोगों का काफी अलग सा रहेगा जो उनके लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए रहेगा, कि वो लोग के साथ में एक मेमोरी पे रहेगा कि हाँ हम लोगों ने यहाँ के लोकल फेस्टिवल को अटेंड किया है, हम लोगों ने लोकल के साथ में टाइम स्पेंड किया है, वहाँ के कल्चर को हमने समझा है, रिचुअल्स को हमने समझा है। वही अगर नॉर्मल डेज में जब टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं ऑब्वियसली उनके पास भी मेमोरीज रहेगा, लेकिन उन लोग बस आके जगह को देख के जगह को फील करके जा रहे हैं, उन लोग वो कल्चर का वो फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाता है उस दौरान पे।

0: तो वही है कि अगर लोगों को कल्चर को अच्छे से समझना है या उसको इस तरीके से थोड़ा सा फील करना है, तो अगर वो लोग फेस्टिवल टाइम पे आते हैं, अप्रैल के टाइम पे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। आइए, जगह को देखिए, कल्चर को समझिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग आएंगे, हमें जगह को देखेंगे, कल्चर को हम लोगों का भी प्रमोट होगा। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा साफ सफाई का भी ध्यान रखे तो वो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि काफी टूरिस्ट लोग ऐसे, मैं नहीं बोलूंगा कि सब लोग, लेकिन कुछ टूरिस्ट लोग ऐसे हैं कि आते हैं, जगह देखते हैं, लेकिन वहीं पे गंदगी फैला देते हैं। तो थोड़ा सा उसको मेंटेन रखिएगा। और सिंस गोल्डन पगोडा है, वो बस एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वो हम लोगों का मंदिर है, तो एक स्पिरिचुअल प्लेस है। तो वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा या एक जो जगह का माहौल है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना भी थोड़ा सा जरूरी है टूरिस्ट लोगों के हिसाब से। तो अगर वो लोग ये सब चीजों का ध्यान दे तो और अच्छा रहेगा।
1: थैंक यू डॉक्टर सिंह, आपने कोंगमू खाम के बारे में इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की। शायद यही किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहाँ इंसान अपना नाम, भाषा और पहचान से पहले सिर्फ एक इंसान बनकर पहुँचता है।

हर सफर अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर छोड़ जाता है। कुछ जगह हमें नेचर से जोड़ती हैं, कुछ हिस्ट्री से और कुछ हमें खुद से मिलवा देती हैं। कोंगमुकाम एक ऐसी ही जगह है जहां आकर एहसास होता है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। बस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी कभी उसे महसूस करने के लिए ऐसी किसी शांत जगह तक आना पड़ता है। अगर कभी भी आपकी यात्रा अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले तक आए तो गोल्डन पगोडा घूमना मत भूलिएगा। यकीन मानिए आप यहाँ से सिर्फ खूबसूरत फोटोज लेकर नहीं बल्कि दिल में सुकून और ढेर सारी यादें लेकर लौटेंगे। तो आज का सफर यहीं तक। आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रेवल शो सफरनामा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश की एक और खूबसूरत अनदेखी और दिल को छू लेने वाली किसी डेस्टिनेशन

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम टूरिज्म एंड कल्चर प्रमोशन प्रोग्राम. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात. अब चलिए सुनते हैं कुछ हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

और श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननास। और अब दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे और सुनते हैं अब कार्यक्रम अपना गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम अपना गीत में। आइए सुनते हैं तावा तत की आवाज में ये गीत नम को बेक, एक निसी सॉन्ग है। गाइस एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। मैं लौट कर आता हूँ, सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

तो सुनो दोस्तों, ये था गीत नम नम को बिल्क, जिसे गाया है ताबा तत् ने। और अब आइए सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन गालो सॉन्ग, जिसे गाया है रोई फीचरिंग ओई दियुम ने। आइए सुनते हैं ये बेहतरीन गीत नो न्यूम।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम अपना गीत में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, गेट रेडी टू वाइब द एब्सोल्यूट मैजिक कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश इन द सेंसेशनल मिटिलाई बाय द रतन ब्रोस। और दोस्तों, कसम से ये ट्रेडिशनल आरी बीट्स और ये मॉडर्न फ्रेश ग्रुप एकदम प्योर फायर है। तो जल्दी से अपने कार के स्पीकर्स और हेडफोन्स का वॉल्यूम फुल करो और मजा लो इस किलर वाइब का।

और श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम अपना गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। और दोस्तों, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा वाणी।

यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा और आप सभी युवा श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी भावनाओं, मानसिक शांति और आत्मसम्मान को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में

सीमाएं यानी बाउंड्रीज हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है, इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं बाउंड्रीज मानसिक स्वास्थ्य की पहली सुरक्षा विषय पर अपने विचार जिन्हें प्रस्तुत कर रही है मंजू शर्मा। आइए श्रोताओं जानते हैं कि स्वास्थ्य सीमाएं क्या होती है, ये हमारे जीवन और रिश्तों में क्यों आवश्यक है और कैसे ये हमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति के साथ जीना सिखाती है। जिस दिन आप अपनी शांति की रक्षा करना सीख जाते हैं उसी दिन से आप खुद से सच्चा प्रेम करना शुरू कर देते हैं। किशोर अवस्था और युवावस्था जिंदगी का वो दौर है जहां हम खुद को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बात समझे और हमें अपनाएं। लेकिन कई बार इसी चाहत में हम अपनी भावनाओं, अपनी पसंद और अपनी मानसिक शांति को पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं लोग हमें गलत ना समझ ले या हमसे दूर ना हो जाए। क्या आपने कभी सिर्फ किसी को खुश रखने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध हाँ कहा है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद अब समय आ गया है कि हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करें, बाउंड्रीज यानी अपनी स्वास्थ्य सीमाएं। दोस्तों बाउंड्रीज का मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं होता बल्कि रिश्तों को सम्मान और समझ के साथ निभाना होता है। ये हमें सिखाती है कि दूसरों का सम्मान करते हुए भी हम अपने भावनाओं, अपने समय और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में हम जानेंगे कि बाउंड्रीज क्या होती है, ये हमारी मानसिक सेहत के लिए क्यों जरूरी है और इन्हें बिना किसी से रिश्ता बिगाड़े कैसे अपनाया जा सकता है। पिछले भाग में हमने जाना कि बाउंड्रीज यानी स्वास्थ्य सीमाएं हमारी मानसिक शांति और आत्मसम्मान के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बाउंड्रीज होती क्या है। सरल शब्दों में कहे तो बाउंड्रीज का मतलब है अपनी जरूरतों, भावनाओं और सीमाओं को पहचानना और उन्हें सम्मान पूर्वक दूसरों तक पहुंचाना। ये कहना कि मुझे इस बात से तकलीफ होती है या मैं अभी इसके लिए सहज नहीं हूं भी एक स्वास्थ्य बाउंड्री है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज बनाने से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बाउंड्रीज रिश्तों को और मजबूत बनाती है, क्योंकि जहां सम्मान, समझ और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होती है वही विश्वास भी बना रहता है। युवा अवस्था में हम कई नए रिश्ते बनाते हैं, दोस्ती, कॉलेज, सोशल मीडिया और कभी कभी प्रेम संबंध भी। इसलिए दोस्तों बाउंड्रीज दीवारें नहीं होती बल्कि ऐसे स्वास्थ्य सीमाएं होती है जो हमें सुरक्षित, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अब सवाल ये है कि अगर बाउंड्रीज इतनी जरूरी है तो फिर उन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? दरअसल बचपन से हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि सबको खुश रखना अच्छी बात है। धीरे धीरे हम दूसरों की भावनाओं का तो ध्यान रखने लगते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हमें डर होता है कि अगर हमने ना कहा, अपनी बात रखी या किसी बात पर असहमति जताई तो लोग हमें गलत समझेंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे या हमें छोड़ देंगे। यही डर हमें अपनी जरूरतों से दूर कर देता है। हम मन से थके हुए होने के बावजूद हर किसी की मदद करते रहते हैं, अपनी परेशानी छिपाकर मुस्कुराते रहते हैं और हर बार अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी को चुन लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, जो रिश्ता आपकी चुप्पी पर टिका हो वो मजबूत नहीं होता, और जो रिश्ता आपकी सच्ची भावनाओं को समझे

वही वास्तव में आपका अपना होता है। या आपने कभी सिर्फ इसलिए ना कहा, नहीं कहा क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, या फिर लोग आपको स्वार्थी, बदतमीज या अहंकारी समझेंगे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से युवा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपनी भावनाओं, अपने समय और अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बात पर हाँ कहना आपकी अच्छाई की पहचान नहीं है। कई बार ये इस बात को संकेत होता है कि आप अपनी जरूरतों को सबसे आखिर में रख रहे हैं। दोस्तों, ना कहना किसी का अपमान करना नहीं है, ये सिर्फ अपनी सीमाओं और अपनी क्षमता को समझना है। अगर आप थके हुए हैं, किसी बात से सहज नहीं है या किसी काम के लिए तैयार नहीं है, तो विनम्रता से मना करना बिल्कुल ठीक है। एक स्वस्थ रिश्ता वही होता है जहां आपकी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी सामने वाले की। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं, वे आपकी भावनाओं और आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। इसलिए अगली बार जब जरूरत हो तो बिना अपराध भोग के प्यार इसलिए अगली बार जब जरूरत हो तो बिना अपराध बोध के प्यार और सम्मान के साथ ना कहना सीखिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा ना आपकी मानसिक शांति की सबसे बड़ी हाँ बन जाता है। अब तक हमने समझा कि बाउंड्रीज क्या होती है, उन्हें बनाना क्यों मुश्किल लगता है, और ये भी है कि ना कहना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या हर रिश्ते में बाउंड्रीज होना जरूरी है? इसका उत्तर है हाँ। चाहे रिश्ता माता-पिता का हो, भाई-बहन का, दोस्तों का, शिक्षक का या प्रेम संबंध का, हर रिश्ते में सम्मान और समझ की जगह होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अपनों से दूर हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे की भावनाओं, समय, निजी जीवन और विचारों का सम्मान करना सीखें। कई बार हम चाहते हैं और सोचते हैं कि अपने लोगों से बाउंड्रीज की बात करना गलत है, लेकिन सच ये है कि स्वास्थ्य रिश्तों में खुलकर बात करने की जगह होती है। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है, तो उसे मन में दबाने के बजाय शांत और सम्मानजनक तरीके से कहना ज्यादा बेहतर है। सबसे पहला कदम है शांत रहकर अपनी बात कहना। गुस्से में कही गई बात अक्सर गलत समझी जाती है, लेकिन सम्मान पूर्वक कही गई बात दिल तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो कहने के बजाय हम कह सकते हैं, जब ऐसा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी तरह अगर आपको किसी काम के लिए समय चाहिए, तो बिना अपराध बोध के कह सकते हैं, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं या मुझे थोड़ा समय चाहिए। याद रखिए, अपनी बात रखना किसी को नीचा दिखाना नहीं है। बाउंड्रीज का उद्देश्य बहस जीतना नहीं, बल्कि रिश्तों में सम्मान और समझ बनाए रखना है। जब हम पहली बार अपनी बाउंड्रीज तय करना शुरू करते हैं, तो अक्सर एक भावना हमारा पीछा करती है, अपराध बोध यानी गिल्ट। हमें लगता है, क्या मैंने ज्यादा बोल दिया, क्या मैं स्वार्थी बन गई, या कहीं मेरी वजह से सामने वाला दुखी तो नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों, हर बार गिल्ट महसूस होना इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि आप गलत हो। कई बार ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप पहली बार अपनी जरूरतों को भी महत्व देना सीख रहे होते हैं। याद रखिए, अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखना किसी का दिल दुखाने जैसा नहीं है। अगर आप सम्मान के साथ अपनी बात रखते हैं और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, तो अपने

सीमाएं तय करना बिल्कुल सही है। आज की इस पूरी श्रृंखला में हमने जाना कि बाउंड्रीज यानी स्वास्थ्य सीमाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमने समझा कि ना कहना स्वार्थ नहीं है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं, और हर रिश्ते में सम्मान होना सबसे जरूरी है। दोस्तों याद रखिए, दुनिया को खुश करने की कोशिश में अगर आप खुद से ही दूर हो जाए तो कोई भी सफलता आपको सुकून नहीं दे पाएगी। इसीलिए सबसे पहले अपने मन की आवाज सुनिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए और अपने आत्मसम्मान को भी कम मत होने दीजिए। स्वस्थ बाउंड्रीज हमें लोगों से दूर नहीं करती, बल्कि सही लोगों के और करीब ले जाती है, क्योंकि जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं वे आपकी बात सुनेंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और आपकी सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज इस कार्यक्रम को सुनने वाला कोई युवा अपने मन में संघर्ष लेकर बैठा है, उससे मैं बस इतना कहना चाहूंगी, आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण है, आपकी मानसिक शांति महत्वपूर्ण है और सबसे बढ़कर आप महत्वपूर्ण है। इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी अपने रिश्तों में सम्मान, समझ और संवेदनशीलता को जगह देंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, दूसरे के लिए अच्छा इंसान बनने से पहले अपने लिए दयालु इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू शर्मा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का पहला हिंदी गाना।

आंखों की जुबान वो समझ नहीं पाते, होठों से हम कुछ कह नहीं पाते, दिल की ये बेबसी अब क्या कहें हम, कि बस उनके बिना एक पल भी रह नहीं पाते।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ हिंदी गाने और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो साथी फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ ये वादे करते हुए कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा वाणी आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के साथ।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

और श्रोता दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 9:29 यानी 9:29 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और वक्त हो चला है हमारे इस तीसरे प्रसारण सभा का समाप्ति का। तो दोस्तों समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गई रहते और तकनीकी अभियंता यानी इंजीनियर ऑन ड्यूटी पे थे आना आतो। आशा करता हूं कि इस सभा में सारे बजे कार्यक्रम और सारे जितने भी गाने सॉन्ग्स थे आपको बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। इसी तरह के और भी कार्यक्रमों को मजा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी का ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो अब मुझे यानी आपका होस्ट आपका दोस्त आरजे ननास को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: Shake, shake, mommy, shake it. ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझ कर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हों। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
3: जी नमस्कार
1: शरद जी, आपके साथ है, शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही है जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनलियों की फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा, अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
1: जी हाँ बिल्कुल, अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
3: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलीजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो हैं वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। पुलिस साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूचुअल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इम्प्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेन कर रहा है कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
1: सूरज जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे, जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके, शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए? एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
2: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930 वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं, बहुत जल्दी एक्ट करना। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है, उस SOP में क्या क्या चीज है, आप देखिए अगर SOP को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, FIR भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, UPI से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद, स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दे, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं, उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगी, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है, तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
3: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड है वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है, कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या बताना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें बन 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वहां ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं, और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डिवेलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
2: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कलेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए, उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी किसी आम आदमी को, यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जहां हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं, तो FIR करने में डिले होती है, जिसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, और मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया, या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया, या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का, या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है, पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा है। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डी फ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी, कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूं 1,00,000 रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तो 1,00,000 रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12,000, 12,500, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10,000 रुपए, 5%, 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न एजेंसीज कौन सी, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें वहां। बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करें, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसी काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़ी अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम है, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो KYC की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, EKYC भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात, जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
3: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोले जाते हैं, बीसी मॉडल है यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है और दूसरा सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
2: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलीजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास वो नंबर भी सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने और मेरे पास कोई फोन आया है कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहाँ पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को, ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करे, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या मैं कहता हूं, अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं. यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं. आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में. आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा. जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आरबीआई को एसओपी बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाए, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए. क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है, तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा. तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए. और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो. क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है. तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती. तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहे.
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है. साइबर ठगी से बचने के लिए, आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
2: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है. सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है. और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा.
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग. उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती. याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं. डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है. आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है. आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे. शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार.
2: धन्यवाद.
3: नमस्कार.
0: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: चर्चा का विषय है. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
5: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
4: विधेयक का उद्देश्य

0: लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्य प्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेदों को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। तथाकथित यौम इस्तेसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लूर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha, replying to the debate in the House. Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. Earlier in the day, the upper house witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded, opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
3: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then, the pace of development in Jammu and Kashmir has accelerated. Both heritage and development have received a boost. Employment opportunities have increased and people have witnessed unprecedented infrastructure growth. The people there are happy.
2: CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. India today asked Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. External Affairs Ministry spokesperson Nandi Jaiswal was responding to media queries on remarks made by Pakistan's foreign minister on the so-called Yom-e-Istehsal. He said the world is not fooled by these orchestrated spectacles. Mr. Jaiswal said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been and will always remain an integral and inalienable part of India. India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven players advancing to the second round of women's singles, while all six men's singles players crashed out in the opening round. And with that, we end this news bulletin.
4: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्रों में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी आर्थिक कदमों की घोषणा की, जिसमें अमेरिका को ड्रोन निर्यात पर नियंत्रण भी शामिल। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौमे इस्तेहाद साल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा झूठ फैलाने के ये हताश प्रयास केवल मानवाधिकारों के अपने दयनीय रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में उसकी स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन का साक्षी है। बलोच वॉयस एसोसिएशन बीवीए ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र से पहले एक रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया है। 17 पन्नों के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान का संघर्ष राजनीतिक प्रकृति का है और लंबे समय से कथित उपेक्षा, आर्थिक शोषण और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण वहां असंतोष बढ़ा है। रिपोर्ट में जबरन लोगों को गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं, नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक और असहमति की आवाज दबाने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें पाकिस्तान के जबरन गुमशुदगी मामलों की जांच आयोग और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज श्रीलंका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर दृष्टिकोण के अंतर्गत श्रीलंका के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। विदेश सचिव के रूप में श्रीलंका की ये उनकी पहली यात्रा थी। विदेश सचिव ने इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, प्रधानमंत्री डॉ हरणी अमरासुरिया और विदेश मंत्री विजयथा हेरात से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मामलों, विदेश रोजगार और पर्यटन सचिव अरुणी रणराजा से भी बातचीत की। विदेश सचिव ने विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा से भी मुलाकात की तथा श्रीलंकाई तमिल और भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और परियोजनाओं के संबंध में चल रहे सहयोग की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने चक्रवात दितवाह के बाद घोषित 45 करोड़ डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने रेलवे परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ डॉलर तथा पशुधन और अन्य प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं के लिए 10 करोड़ डॉलर के भारतीय रुपए में दिए जाने वाले दो ऋणों के संबंध में हुए समझौते का स्वागत किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की उपस्थिति में श्रीलंका सरकार के वित्त सचिव और भारत के उच्चायुक्त ने भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के बीच हुए समझौते का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने विद्युत ग्रिडों को आपस में जोड़ने की परियोजना, संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना और त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने सहित ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के तौर तरीके पर भी चर्चा किया। उन्होंने श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से आदित्य प्रताप से।
4: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। उन्होंने इस पर क्षमा मांगी है और अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन ने अमरीका की ओर से हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के उत्तर में उसके विरुद्ध कई आर्थिक कदम उठाने की घोषणा की है, जिनमें ड्रोन के निर्यात पर नियंत्रण और 6 अमरीकी संस्थाओं पर पाबंदियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
0: चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ये कदम चीनी ड्रोन के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध और 43 चीनी कंपनियों को उइघुर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम से संबंधित सूची में शामिल करने के बाद किए गए हैं। मंत्रालय ने अमेरिका से अपने प्रतिबंध को वापस लेने का आग्रह किया और चेतावनी दी है कि यदि नए प्रतिबंध लगाए गए तो चीन और भी कार्रवाई कर सकता है। चीन की ओर से प्रतिबंधित 6 अमेरिकी संस्थाओं में

0: 5% से अधिक गिरकर लगभग $76 प्रति बैरल पर आ गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ओमान से संबंधित बातचीत में प्रगति हुई है। श्री बेसेंट ने कहा कि समझौता शीघ्र हो सकता है। दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इस वर्ष मई के मध्य से जब सरकार ने भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों की निगरानी प्रणाली शुरू की थी, तब से भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण 2400 से अधिक लोग आपातकालीन कक्षों में भर्ती हुए हैं। देश की रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी के अनुसार इस वर्ष भीषण गर्मी से होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की यात्रा पर पहुंचे, जहां इबोला का प्रकोप चिंताजनक रूप से फैल रहा है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से वेतन न मिलने पर की गई हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न हुई है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालीहा और श्री यांशी वल्ली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर और मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल योषण शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी आर्थिक कदमों की घोषणा की, जिसमें अमेरिका को ड्रोन निर्यात पर नियंत्रण भी शामिल है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. China announces retaliatory economic measures against Washington, including controls on drone exports to US. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles in Asan. India today asked Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. A report.
2: External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal was responding to media queries on remarks made by Pakistan's foreign minister on the so-called Yom-e-Istisal. He said, world is not fooled by these orchestrated spectacles. Mr. Jaiswal said, the union and territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been and will always remain an integral and inalienable part of India. He said, the constitutional changes made on the 5th of August 2019 are an internal matter of India and Pakistan has no locus standi to comment on these matters. The spokesperson said these decisions have brought unprecedented socio-economic development, good governance and democratic empowerment to the people of the region. He said Pakistan's statements are aimed at diverting international attention from the brutal suppression of fundamental rights in POJK. With Suparna Sekia, Anand Kumar for World News.
1: The Baloch